0: फल लगे हैं वो भी हट जाते हैं, कोई बीमारी किसी शाखा पे आ रही है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सब भी दूर हो जाता है। और इन पेड़ों का अपना एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि ये नई शाखाओं पे भी आते हैं। अगर आप नहीं काटेंगे तो शाखाएं तो वृद्धि करेंगी लेकिन उतनी नहीं करेंगी, अगर कम रहेंगी तो फिर कम फल उस पे हम अर्जन कर पाएंगे। इसलिए थालों का और इसका प्रूनिंग जरूरी है। इसके अलावा जो किसान भाई नया वृक्षारोपण अपना खरीफ सीजन में करना चाहते हैं तो उसके लिए वो अभी से पेड़ों के हिसाब से कम 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 मतलब एक गहरा, एक चौड़ा, एक ऊंचा गड्ढा हमको करना है, निश्चित दूरी पर रखें। ये थोड़ा सा बदलता है कि कौन सा वृक्ष है, कहाँ पर लगा रहे हैं। तो जो भी आपने सुनिश्चित किया है कि इस बार हम इस पेड़ का वृक्षारोपण करेंगे तो उस स्थान का अगर आपने चयन कर लिया है तो वहाँ पर आप अपना गड्ढा कर लें और उसकी जो भी मिट्टी निकलेगी उसको अपन को फेंकना नहीं है, उस गड्ढे के बाजू में ही रखना है। और वृक्षारोपण का इंतजार, जब हम बारिश का समय आएगा तो हम वृक्षारोपण उसमें करेंगे, लेकिन वृक्षारोपण करने के पहले एक बार जब पूरा थाला पानी से, बारिश के पानी से भर जाए और वो नीचे की तरफ परकुलेट हो जाए तब हमको उसमें मिक्सचर बना के वही मिट्टी लेकर उसमें गोबर की पची हुई खाद लेकर कुछ फंजीसाइड और कुछ इंसेक्टिसाइड मिलाते हुए तब हमको वृक्षारोपण उसमें करना है। क्योंकि ऐसा ना करने पर वो जब कभी कभी पहले कर देते हैं, बारिश आने वाली है तो मिक्सचर बनाया, उस गड्ढे में रखा और हमने उसको वृक्षारोपित कर दिया, लेकिन जब उसमें जो हीट है, गर्मी है, निकलती है तो उस वजह से उसकी जड़ों को सुखा देती है, उसमें भी बल्कि रूट हेयर्स जो होती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं तो उनको सुखा देती है। और हम जब जड़ निकालते हैं तो हमें लगता है कि जड़ें तो साबुत हैं लेकिन हमारा पेड़ सूख गया। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमको वृक्षारोपण करना।
1: ग्रीष्म ऋतु में फलदार वृक्षों का प्रबंधन, इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नीरज कुशवाहा, कार्यक्रम कृषि सामयिकी के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में 7:05 पर सुनिएगा लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रीय एकता विषय पर। 7:20 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 7:45 पर आप सुन सकते हैं सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। श्रोताओं, 8:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह कार्यक्रम हमारा भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सुबह 9:00 लोक संगीत का कार्यक्रम रहेगा लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बिहारी लाल राव और साथी एवं छैल बिहारी वर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। सुबह 9:30 पर आप ही के फरमाइश के गीत रहेंगे, कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। और सुबह 10:00 आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी, यह कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम रहेगा सुबह 10:05 पर। और इस कार्यक्रम में आज हम आपको सोनू निगम के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत सुनवाएंगे। और 10:30 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत।

श्रोताओं, 11 बजे से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम रहेगा, 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम रहेगा और दोपहर 1:45 पर कार्यक्रम रहेगा सुगम संगीत। ये तीनों ही कार्यक्रम जबलपुर केंद्र की प्रस्तुति रहेंगे, भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, संध्या 5 बजे युववाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं जबलपुर।

केंद्र की प्रस्तुति भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम। श्रोताओं 7:21 पर आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से कार्यक्रम चौपाल ग्रामीण भाइयों के लिए रहेगा अभिवादन एवं आरंभिक चर्चा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकते हैं। अभिवादन एवं आरंभिक चर्चा के अंतर्गत किसान भाई कृषि में आधुनिक तकनीक अपनाए और श्री अन्न का प्रसंस्करण। भेंट वार्ता रहेगी गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। वार्ताकार डॉक्टर ए के श्रीवास्तव से भेंट करता रहेंगे श्री सोहन सिंह। कुछ लोकगीत और साथ ही मौसम की जानकारी। तो श्रोताओं ये थी जानकारी आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit,
3: यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदुस्तान हमारा राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जो किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम, भाईचारे एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता राष्ट्र को सशक्त एवं संगठित बनाती है। राष्ट्रीय एकता ही वह भावना है जो विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जाति, वेशभूषा, सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों को एक सूत्र में पिरोए रखती है। अनेक विभिन्नताओं के उपरांत भी सभी परस्पर मेलजोल से रहते हैं। हमारा भारत देश राष्ट्रीय एकता की मिसाल है। जितनी विभिन्नताएं हमारे देश में देखने को मिलती हैं, शायद ही विश्व के किसी अन्य कोने में देखने को मिले। यहाँ अनेक जातियों व संप्रदायों के लोग, जिनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, पुण्यता भिन्न है, फिर भी एक साथ निवास करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं और सभी राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। जब तक किसी राष्ट्र की एकता सशक्त है, तब तक वह राष्ट्र भी सशक्त है। बाह्य शक्तियां इन परिस्थितियों में उसकी अखंडता, सार्वभौमिकता पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं। परंतु जब जब राष्ट्रीय एकता खंडित होती है, तब तब उसे अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। हम यदि इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें, तो हम यही पाते हैं कि जब जब हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ी है, तब तब बाह्य शक्तियों ने उसका लाभ उठाया है और हमें अनेक उनके अधीन भी रहना पड़ा है। इसके विपरीत, अगर हमारी राष्ट्रीय अवचेतना से ही हमें वर्षों की दासता से मुक्ति मिल पाई है, अतः किसी भी राष्ट्र की एकता, अखंडता व सार्वभौमिकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो जो वर्षों तक दासत्व का गुलाम रहा है, वहां राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण कड़ी का मजबूत होना अति आवश्यक है, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो सके। देश में व्याप्त सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता आदि सभी राष्ट्रीय एकता के अवरोधक तत्व हैं, और ये अवरोधक तत्व राष्ट्रीय एकता की कड़ी को कहीं ना कहीं कमजोर बनाते हैं। भारत एक महान स्वतंत्र एवं प्रगतिशील राष्ट्र है। राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी शूद्र मानसिकता से स्वयं को दूर रखें और उसमें बाधक सभी समस्त तत्वों का बहिष्कार करें। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम चाहे जिस क्षेत्र, प्रांत, जाति या समुदाय के हैं, परंतु उससे पूर्व हम भारतीय नागरिक हैं। अतः हम कभी भी ऐसे कृत्य ना करें जिससे हमारे देश के गौरव व उसकी प्रगति में बाधा हो। हम स्वयं अपने राष्ट्र प्रतीक एवं संविधान का सम्मान करें और उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता युग युगांतर तक बनी रहे। हम एक थे, एक हैं और एक ही बने रहेंगे। जैसे जैसे ये विश्वास दृढ़ होता जाएगा, हमारी राष्ट्रीय एकता त्यों त्यों मजबूत होती जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता हिंदुस्तान हमारा विषय पर लघु वार्ता। आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाड़ली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किश्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसान भाई बहनों के हित में सरकार लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। उल्लेखनीय है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबुधाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। ये पिछले 5 महीनों में श्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच दूसरी मुलाकात होगी। बैठक के दौरान दोनों देश अपनी व्यापारिक रणनीति साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के कल्याण की भी बातचीत इन मुद्दों में शामिल होगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होंगे और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल लाड़ली बहना योजना की 36वीं किश्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगावनी से जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 35 किश्तें जारी हो चुकी हैं और कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। योजना की शुरुआत में 1,000 रुपये प्रतिमा दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमा कर दिया गया है।
3: भूलती है हमारे लिए तो और आनंद है कि लाडली बहना योजना का भी लाभ यही दे रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के दरमियान कि आज से सबसे निवेदन है, देश की आधी आबादी माता बहनों की है, इनको लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण दो, लेकिन कांग्रेस, ममता, डीएमके, समाजवादी सब लोगों ने बहनों का, माताओं का अपमान किया। और माननीय प्रधानमंत्री ने उसी दिन कहा था, माताएं बहनें सब भूल सकती है, अपना अपमान नहीं भूलती है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस निर्णय से अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ब्यूरो के निदेशक के रूप में श्री सूद के कार्यकाल को इस महीने की 24 तारीख के बाद भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू का प्रकोप बने रहने की संभावना जताई है। आज ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 60 गेंदों पर नाबाद 105 रन की शानदार पारी खेली। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में 16 मई को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका जिले के प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल श्री डेका यहां आयोजित आदि उत्सव 2026 कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मेरा युवा भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इधर खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शहरी क्षेत्र की समीक्षा बैठक में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। डिंडोरी जिले में टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान करने के उद्देश्य से जिले में आधुनिक एआई तकनीक आधारित कैट ऐप का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। भोपाल में जनगणना 2027 के अंतर्गत निगम सीमा में 3,60,000 से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है और 150 जनगणना ब्लॉकों में मकान सूचीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उधर रायसेन जिले में पुलिस लाइन परिसर में जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों ने युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों और हवाई हमलों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पन्ना में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ने सत्र 2025-26 के सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम में 100% सफलता प्राप्त की है। वहीं झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा ग्राम सार्ड में वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्रामीणों से संवाद के लिए ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य में वृद्धि की। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों के जीवन में आएगी समृद्धि। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री ने कल लाडली बहनों के खातों में भेजी योजना की 36वीं किस्त। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, कई जिलों में लू का अलर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM एंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये शिवप्रिय केंद्र है। प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले के स्वर में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत। श्रोताओं गीत आपको और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

नीला आकाश, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे और मदन मोहन का संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में गीत और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में अभिलाषा फिल्म का गीत, मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आर डी बर्मन का संगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए हीर रांझा फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी की रचना, मदन मोहन का।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति वक्त फिल्म का ही एक गीत महेंद्र कपूर आशा भोसले की आवाजों में साहिद की रचना रवि का संगीत।

वक्त फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। प्रातः के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

सूचना परक दैनिक कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत वंदन अभिनंदन करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ कि उम्मीद से बड़ी कोई दवा नहीं, एक उम्मीद ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। जी हाँ श्रोताओं, उम्मीद। कई बार हम जीवन में गिरते हैं, संभलते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिर वापस उठते हैं, धोखा भी खाते हैं और असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और उम्मीद को खोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में उम्मीद की एक किरण अगर प्रवेश करती है तो वापस से हम अपने आप को सामर्थ्यवान और ऊर्जावान महसूस करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है, अक्सर यह वाक्य हमें सुनने को मिलता है। वाकई में यह पूर्णतः सार्थक भी है, क्योंकि उम्मीद पर जीवन टिका है, उम्मीद पर सृष्टि है और उम्मीद से ही यह सांसें चलती हैं, वरना किसे पता कि अगले पल क्या होने वाला है। उम्मीद वह किरण है जो जीवन में गहरे से गहरे अंधकार में भी उजाला भर देती है। उम्मीद विश्वास पर टिकी होती है और यह विश्वास होता है हमें अपने आप पर, अपनों से और सर्वशक्तिमान ईश्वर से। उम्मीद कई तरह की होती है, प्रातः दो तरह की उम्मीद, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम उम्मीद सकारात्मक लगाते हैं तो परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। इसीलिए अपने जीवन

नमस्कार, शिवप्रीत कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग शिवप्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता उपलब्ध कराकर स्वरोजगार से जोड़ना है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के अंतर्गत इकाइयों के लिए 1,00,000 से 50,00,000 रुपए तक का तथा सेवा इकाइयों के लिए 1,00,000 से 25,00,000 रुपए तक की परियोजनाओं हेतु

ऋण प्रदान किया जाएगा। उद्यम योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और उसका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में 12वीं की उत्तीर्ण अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी और साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आईडी, बैंक पासबुक के साथ सभी दस्तावेजों की छाया प्रति तथा फोटो व शपथ पत्र शामिल होने चाहिए। योजना के तहत हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित शेष ऋण पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान ऋण का नियमित भुगतान समय सीमा में करने की शर्त पर ही देय होगा। आवेदक का किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। साथ ही वह राज्य या केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही भी नहीं होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पोर्टल पर जाकर अपने दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आवेदक कार्यालयीन समय में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, शिवपुरी में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आवेदक वर्तमान में राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न ले रहा हो। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जिले के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 15 मई 2026 से प्रारंभ की जा रही है। विभाग ने इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं ताकि प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के छात्र समय रहते अपना पंजीकरण और नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर सके। जनजातीय कार्य विभाग के अनुसार छात्रवृत्ति के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदनों के लिए विद्यार्थी MPTAASC पोर्टल का उपयोग कर सकेंगे। इसके अंतर्गत नवीनीकरण के आवेदकों के लिए NIC 2.0 पोर्टल की सुविधा भी 15 मई से सक्रिय कर दी जाएगी। विभाग ने अपील की है कि सभी पात्र छात्र छात्राएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर आवेदन सुनिश्चित करें ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर मिल सके। मणिखेड़ा फीडर एवं 33 केवी खेरा फीडर पर मेंटेनेंस का कार्य किए जाने के कारण 14 मई यानी कि आज उक्त फीडर से जुड़े हुए समस्त क्षेत्रों का विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। उक्त फीडरों के बंद रहने से प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक 33-11 केवी उपकेंद्र मणिखेड़ा एवं पड़ोड़ा से जुड़े हुए समस्त क्षेत्र तथा 33-11 केवी उपकेंद्र खरे देहरदा, गणेश पचावली एवं एजवारा से जुड़े हुए समस्त क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधानमंत्री जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र प्रसाद सोनी के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं उनकी अध्यक्षता में सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया खेल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्रीमती यांगचेन डोलकर भुटिया एवं जिला खेल अधिकारी श्री के खरे विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य जागृति योजना 2025 के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती रंजना चतुर्वेदी ने हॉकी खिलाड़ियों को पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा के लिए कानूनी बारीकियों की विस्तृत जानकारी दी। श्रोताओं, आज का अधिकतम तापमान रहेगा 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं आर्द्रता रहेगी 37%। श्रोताओं, आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि वैसे तो रोज ही कुछ ना कुछ दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन लोकसभा का आज के दिन नामांकन किया गया था।
आपको पता होगा कि पहले इसको हाउस ऑफ द प्यूपिल कहा जाता था, लेकिन 14 मई 1954 का यह नामांकन लोकसभा का नामांकन रखा गया। श्रोताओं, इस जानकारी के साथ ही दीजिए कार्यक्रम से अनुमति न

0: नमस्कार शिवपुरी।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी।
2: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। इस बारे में खाड़ी क्षेत्र के लिए अपर सचिव असीम महाजन ने बताया।
3: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA LNG की आपूर्ति की जाएगी।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अबू धाबी में होने वाली यह बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू प्याज सब्जियां फल खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति

0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमरीकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बा लक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाईं। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर

ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरी चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल सन 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरी चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरी चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरी चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, यह आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से देश के करोड़ों किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल हुई बैठक में 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल प्रदेश की 1,25,00,000 से ज्यादा लाडली बहनों के बैंक खातों में योजना की 36वीं किश्त अंतरित की। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में अब तक

कुल 55,926 करोड़ रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में जमा की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल सहित प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी का असर बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बिहारी लाल राव और साथी एवं छैल बिहारी वर्मा के गाए हुए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं बिहारी लाल राव और साथी के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग प्रस्तुत किया जा रहा है आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए छैल विहारी वर्मा का गाया हुआ ये लोकगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे छैल बिहारी राव के गाए हुए ये गीत, और अब लीजिए सुनिए बिहारी लाल राव और साथिया का गाया हुआ ये

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए बिहारी लाल राव और साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे बिहारी लाल राव और साथी का गाया हुआ ये लोकगीत। लीजिए श्रोताओं सुनिए छैल बिहारी वर्मा का गाया हुआ ये लोकगीत।
1: अरे दे दे लंबो चोक लंगुरिया, हाँ दे दे री हो दे दे लंबो चोक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे। दे दे लंबो चोक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे। अब के तो हम इकले आए, अब के तो हम इकले आए, अब के सब घर आमेंगे। दे दे लंबो चोक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे। दे दे लंबो चोक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे। दे दे लंबो चोक।

पैदल आए, अब के तो हम पैदल आए, अब के गाड़ी लामेंगे, अब के तो हम पैदल आए, अब के गाड़ी लामेंगे, अब के तो हम पैदल आए, अब के गाड़ी लामेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया।

लाए, अब के तो हम लाली लाए, अब के लाला लामेंगे, दे दे लंबो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लंबो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लंबो चौक लंगुरिया।

0: के तो हम तांगा लाए, अब के तो हम तांगा लाए, अब के मोटर लामेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया, बरस दिना में आमेंगे, दे दे लम्बो चौक लंगुरिया, बरस दिना में।
1: अभी आप सुन रहे थे छैल बिहारी वर्मा का गाया हुआ ये लोकगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको बिहारी लाल राव और साथी एवं छैल बिहारी वर्मा के गाए हुए लोकगीत सुनवाए। इसी के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना संगम फिल्म से लिया हुआ ये गीत। आवाज थी मुकेश और लता मंगेशकर की, शैलेंद्र की रचना थी और शंकर जयकिशन का संगीत था। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में श्रोताओं गीत आपको और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है गांधी कॉलोनी से। नवीन भंसाली, शालिनी भंसाली, प्रेरणा कुनलाल, आलोक नाहटा, नीना नाहटा, हर्षिता। और एक और फरमाइशी खत हमारे पास है सिद्ध बिहार कॉलोनी से। रवि जैन, पर्व जैन, अवनी, कोको एवं इनके समस्त साथीगण। आइए, आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

प्यार झुकता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। फरमाइशी फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खर्चे। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

दयावान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना पंकज उधास अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीत लिखा था अजीज़ कयासी ने और संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं।

चांदनी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर, विनोद राठौर की आवाजों में, आनंद बख्शी की रचना थी और शिव हरी का संगीत था। श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला फरमाइशी खत हमारे पास आया है इंदिरा विहार रायगढ़ से। अकरम नूरजहां, डब्ल्यू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वली उल्लाह नूरजहां का लीजिए सुनिए ये गीत।

0: कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: तेरे चेहरे में वो जादू है।
0: किशोर कुमार की आवाज, इंदीवर के बोल।

श्रोता, धर्मात्मा फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM बैंड 100.2 MHz पर। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित की जाएगी। तब तक सुनते रहिए इस

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है अशोकनगर जिले की चिट्ठी। आलेख नीरज कुमार शुक्ल, वाचन स्वर शरद बाघेला। अशोकनगर जिले के 24,667 हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 600 रुपए के प्रति माह के मान से 1,48,02,00 रुपए की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की। विगत दिनों केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक ली और उसकी अध्यक्षता करते हुए जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। श्री सिंधिया जिले की मुंगावली, बहादुरपुर, चंदेरी, पिपरई तहसीलों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी हुए। उन्होंने अशोकनगर पिपरई मार्ग पर नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का उद्घाटन किया। इस पुल के निर्माण से मुंगावली पिपरई से अशोकनगर जाने में नागरिकों को 12 माह निर्बाध यातायात उपलब्ध होगा। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। दोपहर में सड़कों पर वाहनों की आवाजाही काफी कम रही। तेज लू चलने के कारण लोग खुद को कपड़ों से ढककर यात्रा कर रहे हैं। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने बीते दिनों जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से अस्पताल की व्यवस्थाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर केपी यादव ने जिले का दौरा कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्यों की समीक्षा की और उपार्जन केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध सुविधाएं, बारदाने की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था, भंडारण और किसानों को भुगतान समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। वहीं आयुक्त दिव्यांगजन मध्य प्रदेश अजय खेमरिया ने जिले के प्रवास के दौरान जेल में आयोजित बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में चिन्हित 7 बंदी दिव्यांगजनों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किए। संभागायुक्त ग्वालियर मनोज खत्री ने जिले की नवीन कृषि उपज मंडी और एक निजी वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और उपार्जन कार्यों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल पर प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच लैंगिक समानता, उनके अधिकारों और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है। जिले में जनगणना का कार्य जोरों पर है। विगत दिनों जिले में स्वगणना कार्यक्रम संचालित किया गया। जनगणना की अगली प्रक्रिया के अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर साकेत मालवी ने नगरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर अपने समकक्ष जनगणना का कार्य प्रारंभ करवाया। अशोकनगर जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कैंप की शुरुआत फिटनेस जागरूकता रैली के साथ की गई। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत ग्राम सहराई में बेलन नदी का गहरीकरण कार्य किया गया। इसी के अंतर्गत अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने ग्राम पंचायत सहराई में ग्रामीणों के साथ श्रमदान किया। अशोकनगर कलेक्टर साकेत मालवी ने विगत दिनों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुपयोगी व खुले बोरवेल को तुरंत बंद कराए जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि लापरवाही पाए जाने पर भूस्वामी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर जिले में किसानों द्वारा नरवाई जलाई जा रही है, जिसको लेकर विगत दिनों पीपरई क्षेत्र के बेसरा गांव के पास खेतों की नरवाई में लगी आग की चपेट में आने से 4 बाइक सवार झुलस गए। अशोकनगर कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया था, जिसका उल्लंघन करने वाले 7 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जिले में विगत दिनों पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। शुभारंभ अवसर पर अशोकनगर जिले की पर्यटन नगरी चंदेरी स्थित किला कोठी हेलीपैड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के अंतर्गत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। वहीं अशोकनगर में विगत दिनों अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 117 नव विवाहित जोड़ों ने नए जीवन की शुरुआत की। सम्मेलन में जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अशोकनगर जिले में आगामी खरीफ फसलों की बोनी की तैयारी शुरू हो गई है। कलेक्टर साकेत मालवी ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में लगभग 6.40 लाख मेट्रिक टन यूरिया, 1.57 लाख मेट्रिक टन डीएपी, 3.46 लाख मेट्रिक टन एनपीके, इसी प्रकार 5.13 लाख मेट्रिक टन डीएपी, एनपीके और 3.50 लाख मेट्रिक टन एसएसपी खाद उपलब्ध है। अशोकनगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे अशोक नगर जिले की चिट्ठी। यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपको सोनू निगम के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गैर फिल्मी गीत के साथ।

0: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। श्रोताओं, सोनू निगम के गाए हुए गैर फिल्मी नगमे और भी सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: लीजिए श्रोताओं, सुनिए सोनू निगम का गाया हुआ ये गैर फिल्मी नगमा।

जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है, मेरे दिल की हर धड़कन सिर्फ तेरा नाम लेती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं सुनिए गैर फिल्मी नगमा सुगनू निगम का गाया हुआ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सोनू निगम के गाए हुए इस गैर फिल्मी नगमे के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत करती है आपकी रेडियो सखी विनीता। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना याराना फिल्म से लिया हुआ ये गीत। अनजान के बोल थे राजेश रोशन का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए ये गीत।

कुमार सानू अलकायागदी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कयामत फिल्म का गीत। समीर की रचना थी, नदीम श्रवण का संगीत। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये गीत।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में काला पत्थर फिल्म से लिया हुआ गीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी की रचना को शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में कन्यादान फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी की रचना को आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फिल्म थी कन्यादान। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं, सुनिए ये गीत।

हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों में, शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए श्रोताओं सुनिए ये।

0: हसीना मान जाएगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। अख्तर रोमानी ने इस गीत को लिखा था, कल्याण जी आनंद जी ने संगीत तैयार किया था। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये शिवपुरी केंद्र है FM 100.2 MHz पर। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें, सुनते रहें। ये
1: हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
0: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का

0: हार्दिक हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए और आप मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं। इस विषय पर चर्चा करते करते सुनेंगे सुमधुर गीत, लेकिन गीत होंगे आज हमारी पसंद के और बातें होंगी आपकी। तो कॉल कीजिए 2660902 पर और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हेलो
1: हॉटलाइन।
0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, मैं शुक्लाल प्रजापत बोल रहा हूँ, निसारपुर से, धार जिला कुक्षी तहसील से।
0: कौन शुक्ला जी, आगे पूरा नाम बताइए।
1: शुक्लाल प्रजापत जी।
0: सुखलाल।
1: हाँ
0: जी, कहाँ से?
1: निसारपुर धार जिले से।
0: धार से। तो सुखलाल जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है।
0: और धार जिले में गर्मी का मौसम कैसा चल रहा है?
1: गर्मी का मौसम ज्यादा है अभी, गर्मी तो बहुत ज्यादा। जिन्हें ईटे बनाते हैं हम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है, क्या 45 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है।
0: बिल्कुल। और है ना, आपको तो दिन भर का काम रहता है और भरी गर्मी में ही काम करना पड़ता है।
1: हाँ, भरी गर्मी में काम करना पड़ता है और सिर पे टोपी वगैरह बांध के।
0: हाँ जी,
1: कंप्लीट रहना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल, काम करिए अपनी शिद्दत से, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। आप केली का पना पीते रहिए, प्याज खाइए, जिससे आप लू की चपेट में ना आ पाए।
1: जी।
0: हाँ सुखलाल जी, आज का कार्यक्रम आप जानते ही हैं, बात आपकी, गीत हमारे, और आज का विषय हमने रखा है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए।
1: मुसीबत का सामना मैडम जी धैर्य से करना चाहिए। और क्या है कि मुसीबत तो आती जाती रहती है, समय निकलता जाता है। इसके लिए क्या है कि थोड़ा धैर्य रख के और थोड़ा सोच समझ के कोई कदम गलत ना उठाए।
0: बिल्कुल। जैसे कोई मुसीबत ना आए किसी पर भी, लेकिन यदि आपके यहाँ छोटी मोटी मुसीबत आती है तो आप क्या होते हैं, घबरा जाते हैं या शांति से उसका निराकरण करते हैं?
1: शांति से निराकरण करते हैं। करोना काल में आई थी मुसीबत तो।
0: हाँ जी
1: जी, तो क्या है कि धीरे धीरे उससे अपन पार हो तो हो गए हैं। धीरे से शांति से थोड़ा चलोगे तो बढ़िया रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात बोली आपने। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सुखलाल जी, कॉल करने के लिए धन्यवाद। और कल 11 बजे से आप अपना प्रोग्राम सुन सकेंगे, 11 से 12।
1: ठीक है,
0: ठीक है जी, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: जी
0: नमस्ते।
1: जी मैडम नमस्ते। मैं
0: कौन?
1: सुमित बात कर रहा हूँ एमपी धार से।
0: प्रदीप,
1: सुमित सुमित
0: सुमित। अभी भी हमारे जो पहले कॉलर हैं धार से ही उन्होंने कॉल किया था।
1: अच्छा।
0: चलिए, एक हफ्ते के बाद ही कॉल कर रहे हैं ना आप?
1: नहीं, मुझे सारे नियम मालूम है।
0: अच्छा जी, थैंक
1: हाँ
0: यू वेरी
1: जी, ना
0: मच।
1: करें। हाँ
0: हाँ
1: जी, हाँ जी।
0: जी,
1: मेरी बात किससे हो रही है?
0: कविता रावत।
1: कविता जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है आपसे।

0: पहली बार बात हो रही है शायद।
1: जी हाँ, पहली बार बात हो रही है सुमित जी। आज का जो विषय है ना, वो ये है कि मुसीबतों का सामना हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि
0: अच्छा, जिस
1: जीवन है
0: प्रकार
1: तो मुसीबतें तो एक न एक आती ही रहती हैं, है ना। तो बताइए आपका इसमें क्या मत है।
0: मेरा मत मैडम इसमें यह है कि जो हमसे बड़े होते हैं या जिनको हमसे ज्यादा समझ होती है, हमें उनके जो तजुर्बे होते हैं, उनके जिंदगी में, उनकी जिंदगी में जो कुछ भी घटा हुआ होता है और वो जो संघर्ष करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब उनके आसपास होते हैं तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो सीखने को मिलता है उसी के आधार पे अगर हम हमारी जिंदगी में अगर कभी इस तरह की कोई भी समस्या आती है और हमें अगर उससे जूझना पड़े तो कहीं ना कहीं हमें सुविधा होती है। मेरा अपना खुद का अगर मैं बोलूं तो मेरी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष रहा है और बहुत सारी समस्याएं आई मेरी जिंदगी में। उनका सामना मैंने इसी तरीके से किया कि देखा लोगों को कि कैसे वो अपने आप को उन परेशानियों से बाहर निकाला उन्होंने। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: दूसरी बात यह है कि कई बार हमें हमारी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं। तो हम अपने उस दौर को कुछ इस तरह से कहते हैं ना कि जब आपका नाजुक दौर चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग या बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको उकसाती हैं, जिनसे अगर आप अपना धैर्य खो दें या आप अपने ऊपर संतुलन ना रखें तो निश्चित ही परेशानियां जो हैं वो तो हैं ही, उनसे और ज्यादा परेशानियों में हम घिरने के चांस बनते हैं,
1: बिल्कुल सही बात बोली आपने, और
0: है
1: आपसे
0: ना।
1: बातचीत करके आपके विचार जानकर हमें बहुत खुशी हुई। बिल्कुल सही आपने अपना मत रखा है इस विषय पर।
0: हाँ, क्योंकि जिंदगी है तो निश्चित ही ये सारी चीजों का आना स्वाभाविक है।
1: बिल्कुल सही।
0: और मैंने एक चीज और देखी है कि जो हिम्मत रखते हैं ना, उनकी जिंदगी में ये सारे दौर और ज्यादा तेजी से आते हैं। कहीं ना
1: तेजी
0: कहीं
1: से आते
0: ऊपर
1: हैं और
0: वाला या
1: तेजी से
0: पहले से
1: निकल
0: जो
1: भी
0: दौर
1: जाते
0: था
1: हैं।
0: जी,
1: तेजी से आते हैं और तेजी से निकल भी जाते हैं।
0: नहीं वो तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीजें उन्हें उस आदमी को आजमाती हैं और उससे वो
1: हाँ
0: और अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि
1: बिल्कुल।
0: वो हमें जैसे मुझे अब इस समय ऐसा लगता है कि अब कितनी भी बड़ी कोई भी मुश्किल आ जाए वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरा भोपाल से लेके धार तक आने का जो सफर रहा
1: हाँ
0: और भोपाल में मैं जो रहा, तो जो मेरा दौर रहा संघर्ष का दौर रहा, तो मुझे पता है कि मुसीबतों का सामना जो होता है वो एक समय रहते हैं, हम अगर सूझबूझ से कर लें तो निश्चित ही उसका कहीं ना कहीं फिर आगे जाके फायदा तो मिलता ही है।
1: बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद बहुत अच्छी बातें करने के लिए। नमस्कार।
0: जी जी मैडम, नमस्ते आप।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते। हम
1: नमस्ते। कैसे हो?
0: अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हैं। आप कौन हैं?
0: मैं कविता रावत हूँ, आप कौन हैं?
1: मैं भावना यादव हूँ, ताली चौक सिवनी से, मध्य
0: कहाँ
1: प्रदेश।
0: से?
1: ताली चौक सिवनी, मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, सिवनी, मध्य प्रदेश से।
1: जी,
0: और भावना जी, क्या करती हैं आप?
1: हाउस वाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हैं? लेकिन हाउसवाइफ को भी बहुत काम होते हैं। अपने आप को हल्के में मत लीजिएगा।
1: जी, मैं बहुत काम होते हैं सुबह से शाम तक, रात
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: के 12 बजे तक।
0: सही बात है, नॉन स्टॉप विदाउट पे। बिल्कुल। अच्छा भावना जी, आज के विषय पर हम आते हैं। आज का कार्यक्रम हमारा है बात आपकी, गीत हमारे, और विषय है कि मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए, हम उसका सामना कैसे करते हैं।
1: मुसीबत आने पर तो मुसीबत अपने ही को मुसीबत झेलना पड़ता है। धैर्य
0: झेलना तो पड़ता है।
1: रखना, धैर्य रखना चाहिए, धैर्य।
0: आप रखती हैं?
1: जी मैम, रखती हूँ मैं।
0: तो शांति के साथ ही आप अपनी हर मुसीबत को टाल पाती हैं।
1: कभी कभी तो गुस्सा आता है, कभी उससे से कुछ नहीं होता। शांति शांति काम करना चाहिए।
0: हाँ, इस बात को तो आप मानती होंगी कि है ना, हम अगर घबरा जाते हैं तो और हमारी मुसीबत, हमारी
1: बढ़
0: परेशानियां
1: जाती है,
0: बढ़
1: बढ़।
0: जाती
1: जी
0: हैं, है
1: जी
0: ना। तो जितना हम धैर्य रखेंगे, शांति से उसके बारे में सोचेंगे, तो बहुत जल्दी उसके निष्कर्ष पर हम पहुंच पाते हैं।
1: जी मैम,
0: चलिए भावना जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, और उम्मीद करती हूँ एक हफ्ते बाद ही कॉल किया होगा आपने।
1: मैम
0: अरे चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगले हफ्ते लगा सकती हैं।
1: जी,
0: ठीक है,
1: थैंक
0: थैंक यू
1: यू
0: वेरी
1: मैम,
0: मच,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी
0: शुभ नाम आपका?
1: जी नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से मनीष निमाड़े बोल रहा हूँ।
0: मनीष निमाड़े। शायद आप
1: हाँ जी,
0: लेटर भी लिखते थे क्या कभी? है
1: बहुत कभी नहीं, अभी भी
0: ना?
1: जारी है। और कम से
0: वही,
1: कम
0: क्योंकि है ना, लेटर्स पढ़ने में आपका नाम पढ़ने में आया है कई बार, इसीलिए मुझे एकदम से
1: नहीं,
0: क्लिक हुआ।
1: चलिए धन्यवाद कि इस पत्रों की महत्ता के कारण हम कहीं तो याद हैं।
0: नहीं, बहुत बहुत वैल्यू है हमारे श्रोताओं की, ऐसी बात
1: नहीं,
0: नहीं है।
1: वैल्यू तो खैर, तो वो एक याद होना अलग बात है और
0: सही
1: श्रोता का
0: बात
1: अपना वो
0: है।
1: होता। और आज भी ईश्वर की कृपा से मेरी टेबल पर करीबन 300 350 पोस्ट कार्ड आज भी रखे हैं।
0: अरे, तो वो आपने पोस्ट नहीं किए क्या?
1: नहीं, लिख के नहीं रखे मैडम, लिखते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं,
0: अच्छा, ऐसे ही ब्लैंक लाकर
1: मतलब
0: रखे हुए आपने।
1: ब्लैंक लाके रखे हुए रहते हैं। और नित्य का काम है, जैसे खाना जरूरी है ऐसे दो चार पत्र लिखना जरूरी है।
0: भाई, लेकिन है ना, हमारे इन श्रोताओं की वजह से आज भी हमारी पुरानी परंपरा जिंदा है
1: जी,
0: ना। चलिए,
1: हाँ
0: बहुत
1: फिर भी
0: बहुत
1: चल
0: आभार।
1: रहा है। मैं तो श्रोताओं के कारण है, और कुछ ऐसे हैं जो आज पोस्ट कार्ड जिंदा है, नहीं तो बेचारे
0: सही बात है।
1: सबके खत्म हो गए होते।
0: अच्छा मनीष जी, आज के विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करें
1: जी
0: कि मुसीबतों का सामना आप किस प्रकार करते हैं, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए।
1: जी जी मुसीबतें, देखिए मनुष्य जीवन है और मुसीबतें, कठिनाई परेशानियां आती रहेंगी, और इसके लिए, इनका सामना करने के लिए, अगर आप हम किसी बड़े परिवार में रहे हैं, या हमारा सौभाग्य रहा है कि हमारे साथ हमारे पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ये अगर साथ रहे, तो हमको उन्होंने बचपन में ही ठोक ठोक के सिखा दिया है कि हम छोटी मोटी मुसीबतों का कैसे सामना करेंगे, कैसे पार पाएंगे। और जब मुसीबतें बड़ी आती हैं, तब वो लोग भी साथ होते हैं, और हम लोग जो है, परेशानियां आती हैं, तो सबसे पहले तो हम ईश्वर और उसका धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने कष्ट दिया है, तो इसको सहन करने की या पार पाने की हमको धैर्यता भी दी है, थोड़ा संयम से हम उसको काम लें और रास्ते सूझते जाते हैं और हम पार पाते जाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। ये बातचीत आप कल के प्रोग्राम में 11 बजे से 12 बजे के बीच में सुन
1: जी
0: सकेंगे
1: जी
0: मनीष
1: वो
0: जी।
1: जी, वो
0: जी
1: क्या होता है, एक कहावत है
0: हाँ जी।
1: कि आफत के झाड़ पर मुसीबत के फल जब लग जाते हैं, तो मनुष्य को तपती धूप नहीं देखना चाहिए, दूर पड़ रही छोटी सी छांव को देखकर भी मन में चिंतन करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: सही बात बोली आपने, मन खुश कर दिया। धन्यवाद कॉल करने के
1: जी,
0: लिए।
1: ओके जी, थैंक यू थैंक यू।
0: जी।

0: हेलो,
1: जी नमस्ते दीदी
0: नमस्ते जी।
1: जी
0: आवाज आपकी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है।
1: जी जी
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: जी मैडम जी, हम ग्राम पिपलिया वराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से जगत सिंह चड़ार बोल रहा है दीदी जी।
0: जगत सिंह जी, आप तो बहुत कॉल करते हैं और आपके कॉल लग भी जाते हैं,
1: जी
0: है ना। अच्छा जगत सिंह जी, ये एक हफ्ते के बीच में तो नहीं लगा आपका कॉल।
1: नहीं जी, होगा 22-24 दिन होगा है।
0: चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि है ना, अगर आप इस बीच में लगा होगा ना कॉल, तो अपनी बातचीत अगर मैं कर भी लूंगी तो मुझे फिर वो हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक
1: हाँ
0: हफ्ते के
1: वो
0: बीच
1: क्या
0: में।
1: है कि सभी लोगों की देखने पड़ती है कब कौन
0: सही
1: बनाना
0: बात
1: है।
0: है, वही तो हमारे बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सके, इसीलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इसको रिकॉर्डिंग के रूप में बनाया
1: नहीं
0: जाए।
1: अच्छा किया, जो तो हमें कोई बात नहीं है, अच्छा काम किया ये तो।
0: अच्छा जगत सिंह जी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
1: देखो मुसीबत आ जाएगी तो वो तो अच्छे से निकालो, जैसे अच्छे से समय निकलता है ऐसे मुसीबत को भी काटो समय।
0: आपके साथ ऐसा होता है क्या, आप बिल्कुल आराम से सुकून से हर मुसीबत का सामना कर लेते हैं या थोड़े से घबरा जाते हैं?
1: जी मैडम जी, हमें तो इस बार ने ऐसा ही बनाओ है कि मुसीबत ही मुसीबत है, क्योंकि पैरों से भी नहीं चल पाती तो मुसीबत चलने में भी होती है,
0: ओहो हाँ, सही
1: और
0: बात है।
1: देख भी नहीं पाते तो देखने की भी समस्या मन में सोचते हैं यार के ऐसा हम भी देखते।
0: ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे बड़ा धैर्यवान तो कोई होगा ही नहीं, है
1: जी
0: ना। इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी आप खुश हैं, आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश मिजाज इंसान हैं।
1: जी अपन जा सोचते, अब भगवान ने जैसा किया तो ठीक किया, अब उसको क्या भगवान ही जाने जो कुछ हुए। नहीं
0: चलिए कोई बात नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है जगत सिंह जी?
1: जी, हमारे परिवार में, हमारा परिवार बड़ा है, 5 भाई हम लोग
0: अच्छा।
1: और सभी लोग हैं।
0: चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे दूसरे श्रोता भी जो आपकी बातें सुनेंगे ना, तो निश्चित रूप से उन्हें ये सबक मिलेगा कि छोटी मोटी मुसीबतों से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, जब लोग
1: जी
0: बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी आसानी से झेल जाते हैं,
1: जी
0: है ना। चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए, कल आप
1: ये
0: अपना
1: बोल
0: प्रोग्राम
1: मैडम जी,
0: सुनिएगा।
1: ये बोल रहा है, एक दो नाम ले सकती हैं?
0: बिल्कुल ले लीजिए।
1: रानू दीदी, रानू
0: हाँ
1: दीदी और विपिन भाई साहब, विपिन कटारे गौर झामर से,
0: अच्छा।
1: और रानू दीदी हैं देवास से। जी
0: बिल्कुल हम जानते हैं,
1: उनको अभी कॉल अभी बहुत दिन से नहीं सुना मैंने।
0: मैंने भी नहीं सुना, मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कॉल आए उनका।
1: जी
0: चलिए जगत सिंह जी, धन्यवाद।
1: जी नमस्ते, नमस्ते।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते।
1: जी, नमस्कार बहन जी।
0: कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजला, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश से बात करता हूँ बहन जी।
0: सूरज कुमार सैनी?
1: नहीं, सुरेश कुमार सैनी
0: सुरेश कुमार।
1: जी,
0: अच्छा, कहाँ से? महोबा से।
1: महोबा जिला से। बस
0: जी कैसे हैं सुरेश जी?
1: एकदम अच्छे हैं
0: और क्या करते हैं आप काम?
1: जी। मैं काम तो करता हूँ बहन जी, खेती किसानी भी है अपने पास,
0: हाँ जी।
1: और फूलों का डेकोरेशन का भी काम है। और इस वक्त जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस समय अभी सिलाई कर रहा हूँ, कपड़े सिल रहा हूँ।
0: अरे वाह, मल्टी टैलेंटेड हैं आप
1: जी।
0: तो। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर कि इतना सारा काम आप करते हैं।
1: जी
0: सुरेश जी, बताइए कि आज का विषय है हमारा कि मुसीबतों से हमें, मतलब मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए।
1: मुसीबतों से घबरा नहीं चाहिए कभी भी।
0: जैसे यदि आपके घर में बच्चे हैं, उनके कहीं कोई
1: जी
0: नंबर कम आते हैं या कुछ, है ना, प्रॉब्लम आ जाती है, परीक्षा दोबारा से देनी होती है, तो वो बच्चे घबराते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देते हैं?
1: घबराने वाली बात नहीं है, फिर से प्रयास कीजिए। हाँ जी
0: शांति से आप बच्चों को डील करते हैं या थोड़ा
1: जी
0: गुस्सा
1: बिल्कुल
0: हो
1: शांति
0: जाते
1: से
0: हैं?
1: डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको चार झपट के मारा पीटा जाए, उसमें फिर और बच्चा बिगड़ता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। हमारे बाकी श्रोता भी आपके बारे में जानकर बड़े खुश होंगे और उन्हें एक नया आइडिया भी मिलेगा।
1: जी जी जी
0: चलिए, धन्यवाद सुरेश
1: नमस्कार
0: कुमार जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते। हमको गाना सुनना है।
0: हाँ गाना तो आपको सुनाएंगे हम, लेकिन अपनी पसंद का सुनाएंगे। ये वाला प्रोग्राम है बात आपकी गीत हमारे।
1: अच्छा, ऐसा है।
0: हाँ
1: बुधवार के दिन आते थे ना, फोन कर गीत सुने।
0: बुधवार
1: अब
0: को फोन
1: परसों
0: करे
1: नहीं
0: गीत
1: आ
0: सुने, आज
1: रहे।
0: 11 बजे से आएगा, लेकिन जो कल प्रोग्राम आने वाला है उसे हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं।
1: अच्छा, ऐसा
0: ऐसा
1: मतलब
0: है,
1: कब हुआ? कल आएगा जी गाना?
0: ये वाला गाना कल आएगा, लेकिन गाना आज हमारी पसंद का होगा। आप तो आज हमसे बात करिए, विषय है मुसीबतों का सामना आप कैसे करती हैं।
1: मुसीबत का सामना मैम करना पड़ता है।

0: निकाल आती हूँ मैं।
1: चलिए
0: तुम
1: कोई
0: जाके
1: बात
0: बोला या नहीं कटे बेबी? कौन
1: है?
0: आप कौन बोल रही हो?
1: कविता, कविता दीदी बोल रहे हैं।
0: कविता दीदी, आए बाबा कविता दीदी, बहुत दिन बाद वही आपसे। जी
1: हाँ बहुत दिन बाद बात हो रही है ना। और आपकी
0: जी
1: क्या हाल चाल है?
0: सब ठीक है। मैं कॉल लगाते हैं, हम तुम्हारा कॉल लगता नहीं है। ये
1: अच्छा
0: आर्मी की पेंट की लगेगा तो लगेगा, नहीं तो लगता नहीं है।
1: चलो, लेकिन आप है ना छोटू जी, इतनी मुसीबतों के बावजूद रेडियो से भी प्यार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है।
0: नहीं, रेडियो तो हमारी जान है, और
1: अरे वाह।
0: तुम्हारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लगते हैं। तुम्हारा जो प्रोग्राम देते हैं ना
1: हाँ
0: वो बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातों भी बहुत अच्छी लगती है।
1: चलो, कुछ तो अच्छा लगता
0: बात
1: है
0: तो हाँ।
1: आपको। अच्छा ये बताइए कि अब आप है ना जैसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन उस परिस्थिति में आप घबराते हैं या शांत मन से चलता है आपका काम? धैर्य रखे रहते हैं या घबराते हैं?
0: कौन हम
1: हाँ
0: घबराते क्यों? हम नहीं
1: नहीं घबराते?
0: नहीं नहीं हम नहीं घबराते मैम।
1: अच्छा चलिए, ये बहुत
0: आज
1: अच्छी बात
0: तुम्हारी
1: है।
0: ड्यूटी लगी है?
1: आज हमारी ड्यूटी है।
0: अच्छा, तो हमारा गाना बता दे, कल कल बता देना।
1: अच्छा बता दीजिए। वैसे आज है ना हम जो गा से बात करेंगे और गाने हम लोगों की पसंद के होते हैं, कल सुन लेना 11 बजे से, आज तो ये
0: कल
1: प्रोग्राम
0: ग्यारह
1: नहीं
0: बजे
1: है।
0: सुना दीजिए
1: ठीक है, चलिए।
0: मैम।
1: ओके ओके।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि टीईटी में जो भी छूट दी जानी थी वो पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं उन्हें यह परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा देना अनिवार्य है। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। ब्रह्मचारी फिल्म से गीत सुनेंगे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। गीत लिखा हजरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें औरंगाबाद से आई है। श्रोता है राजेश साबले, राजदीप,

लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज में अगला गीत सुनेंगे फिल्म पड़ोसन से। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश रेलवे कॉलोनी बठिंडा से आई है। श्रोता है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। अगली चिट्ठी मलकापुर महाराष्ट्र से आई है। श्रोता है शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीक, नीना जी, स्वप्निल और अजय। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से। गीत लिखा शकील बदायूं ने, संगीतकार हेमंत कुमार। इस गीत के लिए फरमाइश सनावत से आई है। श्रोता हैं सादिक, शाकिर, मुश्ताक, मंतसा और शादा। अगले श्रोता नेपाल पैलेस सागर से हैं, तिलक, मीना, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

आशा भोसले और साथियों के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म शिकार से। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीतकार शंकर जयकिशन। फरमाइश हमें आई है बीड शहर से, महाराष्ट्र। श्रोता हैं प्रकाश, पराग, प्रदीप और केशव। अगले श्रोता खंडवा से हैं, संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत।

किशोर कुमार के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म ब्लैकमेल से। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतबद्ध किया गीत को कल्याण जी आनंद जी ने। फरमाइश हमें आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, श्रोता हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, अगले श्रोता झालावाड़ से हैं हर्षिता, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर और प्रभुलाल। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

0: भारत की संस्कृति का दर्पण, प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन, कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, मिनी और फैमिली के साथ रील नहीं है, जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है, एवरग्रीन भी है, कहानी नेवर बीन टोल्ड, जेन जी भी है, है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: जनहित में जारी एक सूचना, भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड ना करें। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग दें। नगर पुलिस भोपाल, मध्य प्रदेश। सूचना समाप्त हुई।
4: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम, आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ब्रह्मा विष्णु शिव आदि 36 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ अष्टवसु नवग्रह चाणक्य आदि राजनीति वेत्ताओं को नमन। सभी गुणीजन एवं सुधीजन को मेरा प्रणाम। मैं सोच रही थी मैं क्या बोलूं। वैसे मैं चाहूं तो बहुत कुछ सुना सकती हूं, परंतु रामायण या महाभारत की कथाओं का तो कई बार गायन कर चुकी हूं, इसलिए आज सोचती हूं कि क्यों ना पंचतंत्र से कुछ सुनाऊं। पंचतंत्र, क्योंकि किंवदंतियां कहती हैं कि पंचतंत्र का नित्य शास्त्र अद्भुत है। इस शास्त्र का जो निरंतर अध्ययन करता है इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर सकते। अथ श्री पंचतंत्रम कथा। सुधीजन, दक्षिण के किसी राज्य में महिला रोप्य नाम का एक नगर था। वहां के राजा अमरशक्ति कल्प वृक्ष के समान उदार, प्रजा का संपूर्ण ध्यान रखने वाले एवं सभी कलाओं में निपुण थे। उनके 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति तथा अनंत शक्ति। परंतु तीनों ही पिता के विपरीत अत्यंत अज्ञानी, अविवेकी एवं वाचाल थे। महाराज अमरशक्ति को यह दुख खाए जा रहा था।
1: हे ईश्वर, मुझे आपने सारे सुख दिए हैं, मेरा राज्य चारों ओर से सुरक्षित है, मेरी प्रजा सुखपूर्वक है, परंतु प्रभु मेरे पश्चात मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा? सच है, रूपवान, धनवान एवं भाग्यवान होने पर भी मूर्ख पुत्र का जन्म लेना माता के गर्भ को अपमानित करता है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। ये ठीक रहेगा, कल मैं सभासदों से इस विषय में चर्चा करूंगा।
2: महिला रोप नगर के महाराज राजा अमर शक्ति

0: अपना आसन ग्रहण करें।
1: क्षमा चाहता हूं महाराज, आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। आपकी सभा में 500 से अधिक विद्वान उपस्थित हैं, उसके पश्चात भी।
0: महामंत्री सुमति, मैं अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर अत्यंत व्याकुल हूँ।
1: मेरा निवेदन है महाराज कि पंडित विष्णु शर्मा नाम के विद्वान, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान एवं अध्यापन के लिए सुविख्यात हैं, राजकुमारों को उन्हीं की देखरेख में भेज देना चाहिए।
0: मैं आशा करता हूँ पंडित विष्णु शर्मा मेरे पुत्रों को अति शीघ्र ही शिक्षित बना देंगे, परंतु क्या वे मेरे पुत्रों का दायित्व लेंगे?
1: शुभ कार्य में देर किस बात की महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तुरंत उन्हें आपके समक्ष उपस्थित होने का निवेदन करूं।
0: जैसा आप उचित समझें।
1: महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पंडित विष्णु शर्मा आपके सामने उपस्थित होने की इच्छा रखते हैं।
0: उन्हें ससम्मान सभा में ले आए।
1: जो आज्ञा।
2: प्रणाम महाराज, मैं वेदों के अध्ययन में लीन था, तभी सूचना मिली कि महाराज मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं। आज्ञा करें महाराज, एक दरिद्र शिक्षक आपके राजकीय कार्य में आपकी क्या सेवा कर सकता है?
0: हे विद्वान, मुझ पर अनुग्रह करके यदि आप मेरे पुत्रों को नीति शास्त्र में पारंगत कर सकें, तो मैं आपको 100 गांव का अधिकार दूंगा।
2: क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु 100 गांवों का आधिपत्य प्राप्त करने पर भी मैं विद्या का विक्रय नहीं करूंगा। अधिक क्या कहूं, परंतु आपके पुत्रों को शिक्षित करने में मैं स्वयं भी आनंद की प्राप्ति करूंगा। मैं अर्थलोलुप नहीं हूं, इंद्रिय सुखों से भी विरक्त हो चुका हूं। आप आज की तिथि अंकित कर लें, मैं पंडित विष्णु शर्मा आज ये सिंह घोषणा करता हूं कि आज से 6 मास के अंदर यदि मैंने आपके पुत्रों को नीति शास्त्र में निपुण नहीं बना दिया, तो आप मुझे मृत्यु दंड देकर मेरी सद्गति के मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं।
0: हे देव, आपको कदाचित ये अनुभव नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी समस्या का क्षण भर में ही समाधान कर दिया, परंतु क्या आपको ज्ञात है कि मेरे पुत्र बड़े ही।
2: बस महाराज बस, आज से ये आपकी चिंता मेरी चिंता है। आज पूनम की रात है, आज से ठीक 6 मास बाद आपके तीनों विद्वान पुत्रों को साथ लेकर ही मैं आपसे भेंट करूंगा। आज्ञा महाराज।
3: मंत्रियों सहित महाराज भी विष्णु शर्मा की उस कठिन प्रतिज्ञा को सुनकर चकित हो गए तथा राजपुत्रों को पंडित विष्णु शर्मा की सेवा में सौंप कर निश्चिंत हो गए। उधर विष्णु शर्मा ने नीति शास्त्र के 5 प्रकरण बनाए, जिनका नाम मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक थे, जिन्हें छोटी छोटी कहानियों से तैयार किया गया था। कहते हैं इन 5 प्रकरणों ने 6 मास में ही राजपुत्रों को अद्वितीय विद्वान बना दिया। सर्वप्रथम उन्होंने मित्रभेद से प्रारंभ किया। वर्धमानो महान स्नेह
2: सिंहगो वृषयोर्वने पिशुनेना कि लुब्धेन जंबुकेन विनाशिता। एक नगर में वर्धमान नामक एक वैश्य रहता था। वो बहुत ही धनी था। उसने अपने सदुपायों से प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली थी। अंततः उसने धन का कहीं निवेश करने का सोचा।
4: नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं, धन को कहां लगाऊं? मेरे पास जो धन है उसका कहीं सदुपयोग तो करना चाहिए ना, पर करूं क्या? सत्य है कि धनवान व्यक्ति की गणना उत्तम पुरुषों में होती है। धनिकों के शत्रु भी उनके साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं, जबकि इसके विपरीत दरिद्र व्यक्तियों के आत्मजन भी उनके प्रति अनुचित व्यवहार करते हैं। इस सोचा विचारी में नींद ही नहीं आ रही। क्या करूं क्या करूं? विद्वान कह गए हैं धनोपार्जन के तो 6 तरीके हैं, सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा। नौकरी? हाँ, नौकरी से तो सेवा का उचित मूल्य नहीं मिलता और साथ ही ऊंचे पद वालों की टाट भी सहनी पड़ती है। तब खेती? ये तो अत्यंत ही कष्टदायक है। ना बाबा ना, खेती बिल्कुल ना। तब फिर क्या?
5: एक उपाय है भैया, ब्याज पर पैसे चलाना।
4: ब्याज से पैसे चलाना? ना बाबा ना, ब्याज से पैसे चलाने वालों को भी धन डूबने का भय रहता है। भिक्षा? भिक्षावृत्ति भी कपटी लोगों के कारण निंदनीय हो चुकी है।
5: तब व्यापार?
4: हाँ, व्यापार ही सबसे उत्तम है भैया,
5: यही ठीक रहेगा।
4: मैं कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर व्यापार के लिए चल पड़ूंगा। अब आएगी नहीं।

0: अरे सारी तैयारियां हो गई रे। अरे मौसम भी अनुकूल है, हमें आज ही रवाना होना है।
1: अरे भाई वर्धमान,
0: भैया
1: कहाँ की तैयारी है?
0: साधु मल जी आइए आइए। भैया शहर जा रहा हूँ व्यापार के लिए, जाने से पहले आप सबसे मिलना चाह रहा था। अच्छा हुआ भैया आप आ गए।
1: अरे भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो इसी बहाने आपके दोनों बैल संजीवक और नंदक भी शहर घुमाएंगे।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया, बचपन से ही उन्हें हमने पाला है, उनके बिना जी भी तो नहीं लगता हमारा। अच्छा भैया चलते हैं। नमस्कार भैया।
1: नमस्कार।
0: चलो चलो साथ हुआ। संभल के संभल के संभल के संभल के। ये सातवा, अरे देख तो कितनी धूप चढ़ाई रे। बैल भी थक गए होंगे और बाकी सारे साथियों को भी भूख लग रही होगी। क्या करें रे,
2: क्या करें फिर?
0: वो देख देख देख, अरे जमुना नदी आ गई। चले जमुना किनारे थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और तब तक संजीवक और नंदक भी चराएंगे और विश्राम कर लेंगे।
2: तो जे बात तो हम कह रहे हैं।
0: जी कह रहे का?
2: देख जी, जे आपने बहुत अच्छा किया। वो तो क्या कहते हैं, हम सभी थक गए थे ना, आराम की तो सोच रहे थे, तो हम कहते हैं कि आप भी तनिक विश्राम कर लो सेठ जी।
0: यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। अरे जाओ रे जाओ, ए संजीवक नंदक जाओ चराओ जाके। ए सातवा चला पेड़ की छाता ले आ जा।
2: चलो
0: ये सातवा देख तो, ये संजीवक आज कितनी मस्ती कर रहा है।
2: अरे बहुत मस्ती कर रहा है।
0: अरे अरे अरे, अरे ये तो जमुना नदी के किनारे जा रहा है। ए संजीवक, ए संजीवक जमुना किनारे जाना मत जा रहे। अरे आगे दलदल है।
2: ए संजीवक
0: ये सुन रहे?
2: संजीवक
0: मैं तो सुनता ही नहीं।
2: अरे ये तो अरे रे रे, ए सातवा पूरी तरह
0: संजीवक को निकालने की जुगत ही नहीं हो रही। अब क्या होगा?
2: यही बात तो हम कहते सेठ जी।
0: क्या कह रहे?
2: अरे जय कि आप कब का क्या रुकोगे? अरे अंधेरा होवे को आया है।
0: क्या
2: अंधेरा? क्या कहते कि एक बैल के कारण आपके साथी कहीं शेर चीते के हाथ लग गए तो।
0: शेर चीते? अरे भैया, अरे पसारपा, अरे सातवा, हम उसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं भैया? देख तो वो कितना अस्वस्थ दिख रहा है।
2: यही बात तो हम कह रहे सेठ जी।
0: क्या कह रहे?
2: अरे आपको शायद ये ज्ञान नहीं है, ये जंगल में ना डाकुअन का भी बड़ा आतंक है।
0: अरे क्या कह रहे डाकू?
2: अरे डाकू डाकू
0: भैया,
2: कहते कि ईश्वर ना करे अगर कुछ।
0: अरे चुप चुप। अरे भैया मेरा भी शेर चीते भी डाकू भी। तुम शायद ठीक कहते हो, परंतु संजीवक को?
2: अरे यही बात तो है। आप तो निश्चिंत होकर जाओ, हम यहाँ रुकत है और संजीवक को निकाले का कोई जुगत करत है। और जाके उबरते ही हम जाको लेके शहर आ जाएंगे। बस
0: पक्को पक्को
2: पक्को, आप तो जाओ।
0: ठीक है भैया, हम निकल ले, यही ठीक रहेगा। चलो भैया चलो आगे बढ़ो। ए भैया संजीवक को लेके आ जाना।
2: अरे हम जरूर आ जाएंगे संजीवक को लेके।
0: भैया
2: आ जाओ,
0: जा रहे हैं साथ में।
2: जाओ
0: संजीवक को लेके आना भैया।

0: और फिर सेठ जी संजीवक को छोड़कर चल दिए। कहते हैं समझदार लोग छोटी सी चीज के लिए बड़ी चीज का नुकसान नहीं करते। उधर सारथवाह भी एक पेड़ की डाली पर सो गया और रात बीतने लगी।
1: सवेरा होने को आया, देखें तो संजीवक की का दशा है। अरे अरे, हमें तो लगता ही नहीं कि ये कभी निकल पाएगा, तो हम कितने दिन तक जाके लिए प्रतीक्षा करें? अरे ये तो वैसे ही मर जाएगा, यही बात तो हम कह रहे हैं, हैं? हम काहे जाके लिए अपनी जान को विपदा में डालें? हाँ, हम तो जाको इधर ही छोड़ के चले चलते।
0: सारथवार ने शहर जाकर वर्धमान को संजीवक की मृत्यु का झूठा समाचार दे दिया। दुखी मन से वर्धमान ने उसका श्राद्ध कर्म भी कर दिया। परंतु इधर की कहानी तो कुछ और ही थी। आयु शेष होने के कारण संजीवक बच निकला। यमुना जल से मिश्रित वायु एवं सुनहरी घास को खाकर वो काफी हृष्टपुष्ट हो गया। पूरे जंगल में हुंकारता फिरता था। एक बार उस जंगल में पिंगलक नामक शेर अपने साथियों सहित यमुना में अपनी प्यास बुझाने आया।

0: अरे ये किसकी हुंकार है भाई, मेरे तो सारे शरीर में कंपन होने लगा। नहीं नहीं ये कोई साधारण जानवर नहीं है, अवश्य ही विदेश से आया है। बाप रे बाप, अपने प्राण बचाओ। अरे कर्कट तमनक,
1: जी महाराज,
0: शीघ्र ही सभी सामंत गणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे आ जाओ।
1: जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज आप चलें, हम सभी को लेकर आते हैं। भाई दमनक, सभी को ले चलो यहां से। हाँ क्यों दमनक, हम सियार हैं तो क्या? हमारा भी कोई मान सम्मान है कि नहीं? जब सिंह राजा ने हमें मंत्री पद से हटा ही दिया तो क्यों हम राजा की सहायता करें?
2: परंतु हमारे स्वामी पिंगलक आज भयभीत, मैं उनके भय का सही कारण जानकर उपाय सोचूंगा।
1: आपने कैसे जाना कि स्वामी भयभीत है?
2: इसमें जानने की क्या बात है, बुद्धिमान लोग बिना कहे ही बातों को समझ लेते हैं।
1: अच्छा, आप कैसे महाराज को अपने वश में करेंगे?
2: अरे कर्कट देखो, राजा के प्रति एक सेवक का क्या कर्तव्य होता है
1: बताओ?
2: मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
3: सच कहते हैं, सागर और पर्वत की परिधियां ज्ञात हो सकती हैं, पर मनुष्य का मन ना बाबा ना। तो सुधीजन, अब दमनक तो पिंगलक के पास चला।
1: महाराज को दास का प्रणाम। एक निवेदन है महाराज, आप पानी पीने गए और बिना जल ग्रहण किए ही लौटकर इस प्रकार क्यों बैठ

0: अनुयायी वर्क भय से त्रस्त है, भागना चाहता है। मैं इस स्थान पर एकाकी कैसे रह सकता हूँ?
1: महाराज, आप यहाँ इसी स्थान पर धैर्य पूर्वक मेरी प्रतीक्षा करें। मैं जाकर आवास के वास्तविक कारण को समझकर आता हूँ। मेरे लौटने के बाद ही आप जैसा उचित समझें कीजिएगा।
0: यदि तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।
1: जैसी आज्ञा महाराज।
0: मैंने दमनक पर विश्वास करके क्या ठीक किया? कहीं मंत्री पद से हटाए जाने का बदला तो नहीं ले रहा? मेरे शत्रु को लाकर मुझे मारने की इच्छा तो नहीं रखता? नहीं नहीं, मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर छुप जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा।
1: महाराज ने मुझ पर बहुत भरोसा किया। अब मैं करकट को बताऊंगा कि वास्तविक सेवा वृत्ति क्या होती है। आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। अरे, झाड़ियों के पीछे ये कौन है? ये तो एक बैल है। वाह वाह, भगवान की कृपा से ये बड़ा अच्छा हुआ। इस बैल की हमारे महाराज सिंह से मित्रता करवाकर पुनः शत्रुता करवाऊंगा। और संधि विग्रह की इस नीति से पिंगलक को अपने वश में कर लूंगा। अरे दुष्ट बैल, इधर आओ। अरे महाराज, पिंगलक तुम्हें बुला रहे हैं। इस वन प्रांत में व्यर्थ में क्यों चिल्ला रहे हो?
2: भद्र, ये पिंगलक कौन है?
1: अरे, तुम महाराज पिंगलक को नहीं जानते? वे इस वन के स्वामी सिंह हैं, तुम्हें अभी बुला रहे हैं।
2: हे भद्र, आप बड़े ही उदार एवं सज्जन लग रहे हैं। यदि आप मुझे वहाँ ले चलना ही चाहते हैं तो महाराज से मुझे अभयदान दिलवाने की कृपा कीजिएगा।
1: हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं जाकर देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप तब तक यहीं बैठे रहिए।

0: महाराज की जय हो।
1: क्या सूचना लाए हो दमनक?
0: महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने उस आवाज का पीछा किया। वो कोई सामान्य जीव नहीं है, भगवान शंकर का वाहन महावृषभ नंदी है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर ने उसे संपूर्ण वन में स्वच्छंद विहार करने की अनुमति दी है।
1: तभी मैं सोचूं, एक तृणभोजी पशु इस भयंकर वन में निडर होकर कैसे घूम रहा है। वैसे तमनक, तुमने उससे क्या कहा?
0: हे स्वामी, मैंने भी उससे कह दिया कि ये वन चंडिका के वाहन सिंहराज पिंगलक का है, अतः आप हमारे अतिथि हैं। मैं स्वामी पिंगलक की ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। कृपया चलकर जलपान ग्रहण करें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, आनंद पूर्वक विहार करें।
1: वाह मंत्री श्रेष्ठ दमनक, ऐसा लगता है आपने मेरे मन की बात कह दी। जाएं और शीघ्र ही उन्हें आदर पूर्वक ले आएं।
0: जी महाराज, जाता हूं।
2: हाँ वाह दमनक भाई, क्या कहा महाराज ने? क्या उन्होंने मुझे अभय दान दिया?
0: अभय दान की क्या बात करते हो? मैं महाराज से कुछ कहूं और वो टाल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप निर्भय होकर उनके पास चले, वहां मित्रता पूर्वक रहेंगे। परंतु मित्रता के मद में मुझे भूल मत जाए, नहीं तो आपकी दशा दंतिल सेठ के समान हो जाएगी।
2: अम्मा, ये दंतिल सेठ कौन है भाई?

उस दुष्ट दमनक ने कैसे अपना खेल शुरू कर दिया, पिंगलक के सामने भी अपने को श्रेष्ठ साबित कर लिया और संजीवक को भी मुट्ठी में कर लिया। उसने संजीवक को दंतिल की कथा सुनाई, परंतु हम ये कथा सुनेंगे पंचतंत्र की अगली कड़ी में, आज ही के दिन आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंचतंत्र की पहली कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल अबू धाबी जाएंगे। प्रधानमंत्री 20 मई तक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में हो रही है। इसमें ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य, साथ ही भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना उसके लिए गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा TET को लेकर फैसले में कहा है कि जो भी छूट दी जानी थी वे पहले ही दी जा चुकी है। जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल शेष हैं, उन्हें TET परीक्षा नहीं देनी होगी, लेकिन बाकी सभी शिक्षकों को TET परीक्षा देना होगा। प्रदेश के नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त संकेत एस भोंडवे ने कहा है कि CM हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को खाद उपलब्ध कराएं। और IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजा है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

श्रोता बहनों नमस्कार। कार्यक्रम महिला सभा की आज की कड़ी में आपके साथ हूं मैं, आपकी सखी सुधा मिश्रा। बहनों, इस समय हम सभी गर्मी की लंबी दोपहरी में आलस का अनुभव कर रहे हैं, यानी हम गृहिणियों के पास काम तो बहुत है पर करने का मन नहीं हो रहा, शरीर में आलस है। पर बहनों, ये तो आप भी जानती हैं ना कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आज हम थोड़ा आराम का लालच छोड़कर अपने बेहद जरूरी कामों को करते चलेंगे तो निश्चित रूप से उसके सकारात्मक परिणाम भी हमें जरूर मिलेंगे। बहनों, श्रम यानी मेहनत, वो मेहनत जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, जो हमारे सपनों को साकार करने का रास्ता बनाती है। सच तो यह है बहनों कि बिना परिश्रम के सफलता संभव नहीं है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे किसी न किसी का कड़ा परिश्रम जरूर होता है। श्रम हमें सफलता ही नहीं देता बल्कि हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी सिखाता है। जब हम मेहनत करते हैं तो हमें अपने काम की कद्र भी होती है और यही भावना हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। बहनों, हम अगर अपने आसपास देखें तो हर जगह श्रम का महत्व हमें साफ नजर आता है। एक किसान खेत में मेहनत करता है तब कहीं हमारे घरों तक अन्न पहुंचता है। एक मजदूर दिन रात परिश्रम करता है तब कहीं जाकर एक इमारत खड़ी होती है। ऐसे ही हमारे बच्चे हैं, जब बच्चे लगातार मेहनत से पढ़ाई करते हैं तब कहीं जाकर उन्हें

0: फेनो, आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ता लेकर आए हैं, जिसका कि हमें और आपको सभी को अगर हम ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इसका बहुत ज्यादा हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि बहनों, हमारे पास आमदनी कितनी है, उसे हम किस तरह से कहाँ निवेश करते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, अगर इन सब की समझ हमारे अंदर अच्छी तरह से आ जाए तो हम अपने जीवन को थोड़ा सा बहुत आरामदायक तरीके से बिता सकते हैं। तो बस, हमारी आज की वार्ता का विषय है घरेलू बजट प्रबंधन। वार्ताकार हैं श्रीमती संध्या अग्रवाल। तो सुनते हैं ये वार्ता।
1: आज हो या कल, चाहे वो बीता हुआ हो, आने वाला हो, हम सभी अपने घर परिवार को चलाने के लिए अपनी प्रत्येक माह की आय अथवा कमाई को विभिन्न घरेलू मदों जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य कई आकस्मिक मदों पर अपनी आवश्यकता अनुसार खर्च अथवा व्यय कर, इसी आय की सीमा को ध्यान में रखते हुए एक परिवार में अमुक माह में किस मद पर कितना संभावित खर्च अथवा व्यय करना होगा, उसका एक अनुमानित ब्योरा अथवा विवरण तैयार किया जाता है, जिसे हम घरेलू बजट प्रबंधन का नाम देते हैं। वस्तुतः घरेलू बजट प्रबंधन हमारे परिवार की सभी जरूरतों की पूर्ति हेतु एक सरल कारगर तरीका है। सभी घर परिवार नौकरी पेशा हो या व्यापारी वर्ग हो, बिना बजट बनाए काम ही नहीं चलता। वर्तमान दौर में जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, उसे देखते हुए तो अत्यंत आवश्यक है कि हम अपना घरेलू जीवन यापन चलाने के लिए घरेलू बजट प्रबंधन इस तरीके से करें ताकि हमारा घरेलू बजट संतुलित रहे और हमें परेशानी भी ना हो। तो फिर आइए जानें बजट संबंधी छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें। परिवार में प्रतिमाह के मदों अथवा जरूरतों पर संभावित खर्च का एक अनुमानित ब्योरा अथवा विवरण बनाएं। सामान्य तौर पर एक घरेलू बजट में परिवार की मासिक आय का 50% हिस्सा परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे परिवार के सदस्यों के लिए भोजन, वस्त्र, रहने की व्यवस्था के लिए मकान, शिक्षा, चिकित्सा पर खर्च हो जाता है। बाकी बचे हुए 50% में एक परिवार को अगर उसने किसी प्रकार का लोन लिया है तो उसकी ईएमआई या मासिक किस्त देने के पश्चात सुरक्षित भविष्य हेतु बचत करने के लिए एक निश्चित राशि का निवेश, चाहे वह शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या स्वास्थ्य से, करना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सर्विस या व्यापारी वर्ग से हैं तो नौकरी जाने या व्यापार में घाटा लगने जैसी गंभीर परिस्थितियों के चलते जब तक कि कोई दूसरा काम ना मिल जाए, आप आर्थिक रूप से ना संभल जाएं, एक आवश्यक राशि बचत खाते में अवश्य रखना चाहिए, जिससे हम विपत्ति के दिनों में उस राशि से अपना काम चला सकें। इसके साथ ही हमें अपनी आय से कुछ रकम उन आकस्मिक खर्चों हेतु अवश्य बचाना चाहिए जो कि अचानक सामने आ जाते हैं। इसके लिए प्रतिमाह कुछ रकम अपने खाते में अवश्य रखना चाहिए। मनोरंजन या कहीं घूमने जाने संबंधी जरूरतों का भी हमें बजट में प्रबंध करना चाहिए। अब हमारा घरेलू बजट संतुलित रहे, इसके लिए सर्वप्रथम हमें होड़ या दिखावे में ना पड़कर आर्थिक स्तर के अनुसार घरेलू बजट का प्रबंधन करना चाहिए। यह बात समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए लागू होती है। घरेलू बजट का प्रबंधन कुशलतापूर्वक करने के लिए आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करें। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल का कथन है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और उनकी पूर्ति के साधन सीमित हैं। इसलिए हमें अपने वित्तीय आय के साधनों की उपलब्धता के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें अपने बजट में रखना चाहिए। सीधी सी बात है कि जिन आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करना अत्यंत जरूरी है, उन्हें अपने बजट में सबसे पहले स्थान दें, उनका वित्त प्रबंधन पहले करें। इसके पश्चात जिन आवश्यकताओं की पूर्ति आप कर सकते हैं, उनके लिए बजट में संभावित खर्च तय करें। अंत में वे आवश्यकताएं जिनके लिए तमाम खर्चों और बचत जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक सुरक्षा के पश्चात बजट में रकम बचती है तो उन पर होने वाले संभावित खर्च को व्यय करें। घरेलू बजट के विभिन्न मदों पर संभावित राशि जो कि खर्च करना है उनका मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करें। इनमें से अगर हम भोजन संबंधी व्यय, दैनिक उपयोग की अन्य वस्तुओं को ले लें तो कुछ आसान उपाय जैसे भोजन की क्वालिटी अच्छी रहे, इसके लिए संबंधित खाद्य सामग्री को बाजार में रेट पता करके जहां उचित कीमत पर मिले वहां से ले सकते हैं। घर पर ही भोजन में विभिन्न बदलाव कर होटल संबंधी संस्कृति पर होने वाले खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। जहां तक वस्त्रों के संबंध में बात करें, यह कहना उचित होगा कि हमें अपनी आर्थिक क्षमता के अनुरूप वस्त्र खरीदना चाहिए, क्योंकि वैश्विक संस्कृति के इस दौर में आज जो कपड़ा नया है उसे पुराना होते देर नहीं लगती। अतः अनावश्यक रूप से अलमारी में व्यर्थ के कपड़ों की भीड़ से बचना चाहिए। यही बात हमारी दैनिक उपयोग में आने वाली अन्य घरेलू उपयोगी वस्तुओं के संदर्भ में लागू होती है। घरेलू बजट के एक महत्वपूर्ण मद अथवा खर्च, जैसे मकान की बात करें तो आप अपने आर्थिक स्तर के अनुसार किराए अथवा स्वयं का मकान ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप यह चुनाव कर सकते हैं कि मकान भले ही छोटा हो पर अच्छी सोसाइटी में हो, जिससे आपके जेब पर मकान संबंधी व्यय का अनावश्यक भार ना पड़े। यही बात मकान के रख रखाव के संबंध में है। जैसे मकान के बिजली संबंधी व्यय को लें, आप जहां आवश्यकता हो वहीं बिजली जलाएं। ऐसा करके आप अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं। मकान की साज सज्जा भी कम पैसे में अच्छे से अच्छी करने की कोशिश करें। घरेलू बजट प्रबंधन में वर्तमान शिक्षा प्रणाली अति महत्वपूर्ण मद है, क्योंकि परिवार के बच्चों का पूरा व्यक्तित्व विकास शिक्षा पर आधारित है। आवश्यकता समझकर इस पर आय का एक निश्चित प्रतिशत खर्च करना चाहिए और संभव हो तो भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर शिक्षा के लिए अपनी बचत में से कुछ हिस्सा निवेश करना चाहिए, ताकि अवसर आने पर वह पैसा काम आ सके। इसके लिए शासन की विभिन्न बचत योजनाओं तथा जरूरत पड़ने पर एजुकेशन लोन सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। आवर्ती जमा बीमा योजना या मनी बैक पॉलिसी और भी कई तरह की निवेश स्कीम का उपयोग कर भविष्य में शिक्षा के खर्च का प्रबंध कर सकते हैं। हमारी सरकार ने एवं कहीं कहीं कुछ समाज सेवियों ने शिक्षण संस्थानों को तरह तरह की सुविधाएं देकर बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाई है। हमें चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उन सुविधाओं का लाभ लेकर बच्चों के शिक्षा संबंधी मद का उचित आर्थिक प्रबंधन करें। जो माता पिता अपने बच्चों को गंभीर आर्थिक परिस्थितियों के चलते स्कूल नहीं भेज सकते, वे उन्हें शासन की कल्याणकारी योजना जैसे स्कूल चले हम योजना का लाभ लेकर बच्चों को शिक्षित करें। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी मत को ही लें। घर में कोई अस्वस्थ हुआ नहीं कि डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। यह तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर की फीस व दवाओं का खर्चा आजकल भारी भरकम होता है। इसलिए इसको ध्यान में रखकर आजकल लोग स्वास्थ्य बीमा योजना को अपनाने लगे हैं। प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देकर स्वास्थ्य बीमा करवाया जा सकता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा संबंधी बिल का जो खर्च आता है उस बिल की 75% से लेकर 80% तक राशि स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से चुकाई जा सकती है। अंत में आशय यह है कि चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक इकाई है, व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज और समाज से देश जुड़ा हुआ है, इसलिए आइए आज घरेलू बजट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय को अपने चिंतन और कार्य व्यवहार में ढालकर अपने परिवार के साथ साथ देश को आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक खुशहाली एवं समृद्धि की दिशा की ओर तेजी से अग्रसर करें।
0: बहनों, अभी आपने वार्ता सुनी। विषय था घरेलू बजट प्रबंधन। वार्ताकार थी श्रीमती संध्या अग्रवाल। और अब हम बात करें इस गर्मी की, तो गर्मी में आम पुदीने की चटनी तो आप भी अपने घर में बनाती ही होंगी। पुदीना धनिया अपने अपने घर में हो सकता है कि आप सबने लगाया भी हो।

होगा। और अगर नहीं लगाया होगा बहनों तो जरूर लगा लें, क्योंकि अपने घर की बगिया में या फिर गमले में अगर हमें ये मिल जाता है तो हम कभी भी इसका स्वाद ले सकते हैं। कहने का मतलब ये बहनों कि आप भी अपने घर में अपनी छोटी बगिया जरूर तैयार करें, इससे आपकी आंखों को हरियाली मिलेगी, मन खुश होगा, ताजी हरी पत्तियां हर समय आपकी पहुंच में होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप अपने पर्यावरण के संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान देंगी। तो है ना छोटी सी बगिया के बहुत ढेर सारे लाभ। बहनों जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। जब सुबह हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें जो महसूस होता है वो है ताजी हवा। तो बहनों आज के समय में, आज मौसम में भी इतना ज्यादा बदलाव हो रहा है, ऐसे में जरूरी है कि हम पेड़ पौधे लगाएं। अगर हम हर साल एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें तो हम हरियाली को बढ़ा सकते हैं। बहनों जब हम अपने गमलों में लगे पौधों की सार संभाल करते हैं तो शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से भी प्रसन्न रहते हैं। हमारा शरीर भी तो एक मशीन ही है ना बहनों, हम जितना आराम देंगे उतना ही ये जाम होता जाएगा, और जितनी हम मेहनत करते जाएंगे हमारे शरीर रूपी जो कल पुर्जे हैं ये भी चलते फिरते रहेंगे। तो जो हमने आपसे कहा था ना कि हम देखेंगे कि इसके क्या है प्रभाव, तो अगर हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं तो एक पंथ दो काज, हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों से बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो चलें एक खूबसूरत सा गीत फिर से हमारा इंतजार कर रहा है, सुनते हैं ये गीत।

तो बहनों अब आज हमारा चलने का समय हो रहा है। खूब मेहनत करें, थक जाएं तो आराम से सो जाएं, खूब अच्छी नींद आएगी जो बेहतर स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो आज बहनों बस इतना ही। अनुमति दें सुधा मिश्रा को।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: कवि श्री राग तेलंग।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का 1 बजा है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है। शुरुआत करते हैं लोक भजन से।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत और सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में एक एक गाना, जिसको हमने लिया है फिल्म शिकार से। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनते ही ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म ये इश्क नहीं आसान इस फिल्म से। आवाज अनवर की है, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सुनते हैं ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देवास जिले के टोंक कला गांव में मौजूद पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है और करीब दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। संभाग आयुक्त और कलेक्टर मौके पर है और बचाव कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। इस साल जनवरी में शेख मोहम्मद भारत आए थे। ये एक दशक में उनकी 5वीं भारत यात्रा थी। तब दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये यात्रा दोनों देशों की दोस्ती को और नए स्तर पर ले जाने की कोशिश है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पेयजल व्यवस्था, धार्मिक पर्यटन, नए एयरपोर्ट और अग्निवीर आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ग्रामीण इलाकों में जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री और ITI को रोजगार से जोड़ने पर भी बात होगी। सरकार देखेगी कि योजनाएं जमीन पर कितनी उतरी हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ रुपए की यह योजना अदरक की खेती और उसकी वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। इस मिशन में कृषि, ग्रामीण विकास और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के साथ साथ नाबार्ड, ICAR और एपेडा भी मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी साझा किया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। प्रदेश में 27% OBC आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में फाइनल सुनवाई जारी है। कल चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने का विरोध कर रहे पक्ष की दलीलें सुनी थी। आज दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई होगी। बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। कल खजुराहो में पारा 45.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रतलाम में 45.2 और धार में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उज्जैन, इंदौर और भोपाल में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 मई तक राहत के कोई आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा उन्नत तकनीक अपनाने वाले किसानों से उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अशोकनगर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूहों की महिलाओं को 10 जेंडर मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षण दिया गया। सिवनी जिले में रवि विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य में किसानों की सुविधा के लिए 78 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में आज युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रायसेन जिले में आज संपर्क अभियान के तहत बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। और आगरमालवा जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
2: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
3: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबुधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
5: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
4: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
6: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
1: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज शी जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शराबी का एक गाना। आवाजें हैं लता आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों की। अनजान ने इस गाने को लिखा है। बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने इसी गाने को पसंद किया है। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, आर के साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राजपूत। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनते हैं ये गीत और इसकी फरमाइश हम गाने के बाद बताएंगे। सुनते हैं पहले।

ये गाना लिया था हमने फिल्म राजपूत से, आवाज मोहम्मद रफी की थी, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री वैष्णवी, चंचल डोमड़े और अर्जुन गणेकर। और इन्होंने ये खत लिखा है, कहाँ से लिखा है इसमें मैं तलाश कर रहा हूँ, इन्होंने जगह का नाम नहीं दिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अगली बार आप जब भी पत्र लिखें तो उसमें जगह का नाम जरूर लिखें जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। अगला गाने के इसी गाने के लिए हमारे पास में जो फरमाइश आई है, ग्राम फ्रांसी से लिखने वाले हैं राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से लिखने वाले हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू और बब्बू। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं आजाद नगर लश्कर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां और उनके परिवार के दूसरे सदस्य, नेपाल पैलेस सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गाने को लिया है हमने फिल्म पूनम से, आवाज एक बार फिर मोहम्मद रफी की है, हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है, सुन।

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गाने को फिल्म खुदा कसम से लिया गया है। साथ में दूसरी आवाज़ है आशा भोसले की। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से लिखने वाले हैं बत्ता परिवार के लोग, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद खान। गांधी बाग अकोला से रतन कटनकर और वैशाली कटनकर। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर ब्रक, जितेग ब्रक और मीका ब्रक ने इस गाने को पसंद किया है सुनते ही।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कस्मे वादे फिल्म में किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाज में गीत। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा है, आरडी बर्मन का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। लिखने वाले हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र जिले, अभिजीत गायकवाड़ राही, सरिता गायकवाड़, सिद्धांत गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़ सुखी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गायकवाड़, वैशाली, श्वेता सुमित गायकवाड़ और कुमारी ध्वनि गायकवाड़। और इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया। और पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य सुनते हैं ये गीत, आपकी फरमाइश की अंतिम प्रस्तुति।

इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबर।

0: देवास जिले के टोंककला गांव की पटाखा फैक्ट्री में आज भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई। हादसे में दो मजदूरों की मौत हुई है और दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच पिछले एक साल से उच्च स्तरीय संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों की विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में आज शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री शंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के साथ मिलकर मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत की। करीब 190 करोड़ की यह योजना अदरक की खेती और वैल्यू चेन विकास के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। और प्रदेश में गर्मी का कहर जारी, मौसम विभाग ने इंदौर और उज्जैन में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आइए अब हम आपको बता दें आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप 5:33 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:00। फिल्म संगीत 6:30 पर। और आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी 7:21 पर। रात 8:00 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों का, तो आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में 8:15 पर फिल्म संगीत और 9:30 पर भी आप फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं। आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा रात 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित विधुर मलिक का ध्रुपद गायन, राग होगा राग केदार। ये थे शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आज के आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। थोड़ी देर में हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। शाम 5:00 से इसी मीटर बैंड पर आप मीडियम वेव पर कार्यक्रम सुन सकते हैं। इस बीच डीटीएच की ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने और घायलों का निःशुल्क इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुँच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक नई दिल्ली में शुरू हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में श्री जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युवाणी। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार दोस्तों, आज के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सनाया नायक
1: और मैं हूं अनमोल द्विवेदी। युवा साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, इसी तारतम्य में आकाशवाणी एट 90 हैशटैग आरजे नेक्स्ट कार्यक्रम के अंतर्गत एक तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन विगत दिवस शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ग्वारीघाट जबलपुर में आयोजित हुआ। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस प्रतियोगिता के कुछ संपादित अंश।
2: यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानीगणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम भूपेंद्र राजौरिया है और मैं बीएमएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक था व्यक्तित्व, विकास और भाषा। जब ये टॉपिक पढ़ा तो सबसे पहले जो दिमाग में आया वो था कि एक पंक्ति थी कि कोश कोश पे बदला पानी, चार कोश पे बदली वाणी। हम कितने वर्सटाइल, मतलब कि हमारा देश कितनी विविधता वाला है, हमारा व्यक्तित्व, हमारी भाषा, हमारे सामने वाले जो भी पर्सन होता है उसको बताता है कि हम किस जगह से, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।
3: सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अनिका जोशी है, मैं सेकेंड प्रॉफ की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है सोशल मीडिया का उचित उपयोग। सोशल मीडिया में हम लोग आजकल यूज क्या करते हैं, उसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम फोटोज अपलोड करते हैं, स्टोरीज करते हैं, पोस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को दिखाना होता है कि हम गए कहाँ थे। बट इसका इंफॉर्मेटिव यूज भी है। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे, यदि हम लोग मेडिकल फील्ड के लोग हैं तो बहुत सारी जो चिकित्सा पद्धति है आजकल सोशल मीडिया पे दिखती है, हम लोगों को उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरा नाम सबिया अंसारी है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा टॉपिक है वन

0: जीव संरक्षण क्यों जरूरी है? तो हमको जानना चाहिए कि जो हमारे जीवों की प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही हैं। आजकल इतना प्रदूषण और हमारे वृक्षों की इतनी कटाई हो रही है, वो सब बंद करना चाहिए। परिस्थितियों को संतुलन में रखने के लिए हमें जीव संरक्षण करना चाहिए।
1: साथियों, इस प्रतियोगिता के विजेता रहे आशीष कुमार जैन आज हमारे साथ एक दिन के आरजे के रूप में शामिल हैं।
2: आशीष जी, हम आपका स्वागत करते हैं युवाणी में। आपको कैसा लग रहा है युवाणी कार्यक्रम में जुड़कर?
3: सनाया जी, मुझे आकाशवाणी में आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आकाशवाणी विगत 90 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की दिशा में और देश विदेश की महत्वपूर्ण जानकारियां जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।
2: तो दोस्तों, आज की शुरुआत करेंगे हम दो प्रश्नों के साथ, जिनके उत्तर हम बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में।
1: तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 में प्रकाशित किया है?
2: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार में किस देश की टीम ने वैश्विक स्तर पर पहचान मजबूत की है? तो हम इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर बताएंगे आपको कार्यक्रम के अंत में। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का पहला गीत सुनने का। मूवी है 3 इडियट्स, बोल है स्वानंद किरकिरे के, इसे गाया है शान, सोनू निगम और स्वानंद किरकिरे जी ने।

0: सनाया, क्या तुम्हें पता है एक नई तरह की साइलेंट बीमारी हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है, जिससे दिमाग कमजोर हो रहा है, मन विचलित हो रहा है और तो और ये अवसाद का बड़ा कारण भी बन रही है।
1: अच्छा, मुझे लग रहा है शायद तुम मोबाइल एडिक्शन या हो सकता है स्क्रीन एडिक्शन पर बात कर रहे हो।
0: बिल्कुल सही कहा सनाया तुमने। आज हम चर्चा करेंगे स्क्रीन एडिक्शन और युवाओं पर बढ़ते इनके प्रभाव के बारे में। अच्छा आशीष जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस विषय के बारे में?
2: दोस्तों, जैसा कि मैंने पढ़ा है, एक नए शोध में यह बात सामने आई है कि युवाओं को स्क्रीन एडिक्शन तेजी से अपने माया जाल में फंसाने लगा है, जिससे कई तरीके की परेशानियां और बीमारियां सामने आने लगी हैं। सनाया, क्या आप हमारे दोस्तों को स्क्रीन एडिक्शन के बारे में कुछ लक्षण बता सकती हैं?
1: हाँ जी, क्यों नहीं। स्क्रीन एडिक्शन को ऐसे पहचाना जा सकता है मानो व्यक्ति स्क्रीन पर बिताए जाने वाले टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर स्क्रीन उपलब्ध ना हो तो बेचैनी या चिड़चिड़ापन महसूस करता है।
0: इसके साथ साथ सोशल विड्रॉल सिम्टम भी दिखते हैं, और जिसके कारण वो परिवार और दोस्तों से कम बात करता है और ऑनलाइन ही ज्यादा समय बिताता है। स्क्रीन एडिक्शन का मानसिक प्रभाव भी बढ़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और फीलिंग ऑफ जेलिसी जैसी मानसिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं।
1: अनमोल, इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है हमारी नींद पर। देर रात तक फोन चलाने से स्लीप डिस्टरबेंस की प्रॉब्लम होती है, और नींद पूरी ना होने से अनिद्रा, इंसोमेनिया होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों, स्क्रीन एडिक्शन के कितने सारे निगेटिव इफेक्ट्स हैं, आप सभी एक बात जान लीजिए। अगर आपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल नहीं किया तो स्क्रीन टाइम आपको कंट्रोल करने लगेगा, और इससे आपको आंखों की रोशनी, ब्लर्ड विजन और यहाँ तक कि छोटी उम्र में बच्चों को स्पेक्स, चश्मे आदि पहनने भी पड़ सकते हैं।
0: जी बिल्कुल आशीष जी, तो इसी बात के साथ हम कार्यक्रम में जोड़ते हैं ये गीत, जिसे लिया गया है फिल्म सूरमा से और जिसे आवाज दी है शंकर महादेवन ने।

0: सनाया, कभी पुराने रेडियो को घुमाते हुए आवाज सुनी है? ये आकाशवाणी है।
1: हाँ, और जैसे ही यह शब्द सुनाई देता है लगता है समय थोड़ा थम सा गया है, जैसे किसी कहानी का दरवाजा खुल गया हो।
0: और सोचो, वही आवाज पिछले 90 सालों से हमारे देश की धड़कनों में जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल, कितनी यादें, कितनी कहानियाँ और कितनी आवाजें जो पीढ़ियों को जोड़ती आई हैं। आशीष जी, आपके इस पर क्या विचार हैं?
2: हाँ, मेरा सोचना है कि क्या डिजिटल दौर पर भी आकाशवाणी युवाओं के लिए कुछ रेलेवेंट है क्या?
1: प्लेटफॉर्म बदल गए हैं, लेकिन कंटेंट की वैल्यू आज भी वही है, और आकाशवाणी ने खुद को टाइम के साथ अपडेट भी कर लिया है।
0: मतलब ट्रेडिशनल होते हुए भी मॉडर्न।
1: एग्जैक्टली, आज आकाशवाणी सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्स, हर जगह मौजूद है।
0: और खास बात है कि यूथ को अपनी बात रखने का मौका भी मिलता है।
1: हाँ, युवाणी जैसे कार्यक्रम तो खास तौर पर युवाओं के लिए ही होते हैं, जहाँ वो अपनी आवाज, अपने आइडियाज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं।
2: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ युवा सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि बोलते भी हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। और एक चीज जो मुझे खास लगती है, आकाशवाणी हमेशा से ट्रस्टेड रिसोर्स रहा है।
0: सही बात है, फेक न्यूज के इस दौर में रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है, और आकाशवाणी इस भरोसे को बनाए रखते हुए आगे बढ़ रहा है।
1: और कल्चरल कनेक्शंस भी बन रहे हैं, म्यूजिक, लिटरेचर, रीजनल लैंग्वेजेस, आकाशवाणी ने हमारी संस्कृति को हमेशा जिंदा रखा है।
0: और क्या, 90 साल सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक लेगेसी है, एक सफर है जो लगातार आगे बढ़ रहा है।
1: और इस कड़ी में युवा ही इस कड़ी को, ट्रेडिशन को फ्यूचर से जोड़ते हैं।
2: एग्जैक्टली, युवा जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही आकाशवाणी और अधिक वाइब्रेंट बनेगा।
1: तो सिंपल सी बात है, प्लेटफॉर्म है, मौका है, बस जरूरत है कि युवा आगे आए और अपनी आवाज को पहचान दें।
0: तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये सुकून भरा गीत, जिसे लिया गया है फिल्म मेट्रो इन दिनों से, और जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: सनाया, एक ऑनेस्ट सवाल, क्या आज के युवा सच में समाज के लिए कुछ कर सकते हैं या बस सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं?
1: देखो, कुछ लोग सिर्फ पोस्ट डालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो असल में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं।
0: मतलब रियल वर्क भी हो रहा है।
1: बिल्कुल, कोई बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप्स में हिस्सा ले रहा है, कोई एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है। छोटे छोटे काम, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट।
0: हाँ, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे लोग ज्यादा दिखावा भी नहीं करते।
1: एग्जैक्टली, असली जन कल्याण वही है जहाँ काम हो, शोर नहीं।
0: लेकिन एक कॉमन सोच है, मैं अकेला क्या बदल लूंगा,
1: और यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे एफर्ट से ही शुरू होता है। आशीष जी, आपकी क्या राय है?
2: हाँ, मेरा सोचना है, अगर कोई एक बच्चा पढ़ा दे या किसी की छोटी सी भी मदद कर दे, तो बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। और यह भी बहुत बड़ा काम है, किसी के लिए छोटी सी मदद उसकी जिंदगी बदल सकती है।
1: और आज के यूथ में एनर्जी तो है, बस सही डायरेक्शन चाहिए।
0: सही कहा, अगर यही एनर्जी सही काम में लगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली बेटर हो सकती है।
1: एक चीज मैंने और नोटिस की है कि आजकल बहुत सारे युवा वॉलंटियर वर्क में इंटरेस्ट ले रहे हैं।
2: हाँ, सही कहा आपने, जैसे एनजीओस के साथ जुड़ना, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना या फिर डिजास्टर सिचुएशंस में हेल्प करना, ये सब पहले कॉमन नहीं था।
1: और पैंडेमिक के टाइम पर तो युवाओं ने कमाल ही कर दिया, खाना पहुंचाना, मेडिसिन अरेंज करना, सबका ख्याल रखना।
0: और सनाया, जन कल्याण का काम पेशेंस का काम है, इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। बदलाव धीरे धीरे आता है और कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट है।
1: एग्जैक्टली, छोटा काम हो लेकिन रेगुलर हो, वही असली फर्क लाता है। और मुझे लगता है कि एजुकेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
2: हाँ, सही कहा आपने, अगर स्कूल और कॉलेज पर ही बच्चों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाए तो वो आगे चलकर नेचुरली समाज के लिए काम करेंगे।
0: साथियों, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक हैबिट बननी चाहिए। और ये सिंपल सी बात है, कंप्लेन कम, कंट्रीब्यूशन ज्यादा, सलाह नहीं सहयोग करें।
1: तो साथियों, इसी के साथ जुड़ते हैं यह प्यारे से गीत से, जिसे लिया गया है मूवी धड़क 2 से, जिसे गाया है दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोज।

0: तो साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम के प्रारंभ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, किस संगठन ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर 2025 में प्रकाशित किया है, जिसका उत्तर है खाद्य और कृषि संगठन।
1: और हमारा आज का दूसरा प्रश्न था, वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार में किस देश की टीम ने वैश्विक स्तर पर पहचान मजबूत की थी, जिसका जवाब है इंडिया ने। साथियों, अब अनुमति दीजिए आज के अपने रेडियो साथी सनाया नायक,
0: अनमोल द्विवेदी और आज के कार्यक्रम के एक दिन के आरजे के रूप में सम्मिलित आशीष कुमार जैन जी को। साथियों, आपको हमारा नमस्कार।
2: आकाशवाणी जबलपुर के योगदान के अंतर्गत कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
4: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर।
5: देश है प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सर्वप्रथम सुनिए यह गीत फिल्म तमाशा से, मोहित चौहान की आवाज, इरशाद कामिल के लिखे बोल और ए आर रहमान का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म डियर जिंदगी से अमित त्रिवेदी की शब्द रचना कौसर मुनीर का संगीत और जसलीन रॉयल की आवाज़।

विशाल दरलानी, शालमली खोलगड़े, शिता और बादशाह की आवाज़ों में आप अभी आप सुन रहे थे इरशाद कामिल का लिखा ये गीत। विशाल शेखर का संगीत और फिल्म का नाम था सुल्तान। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, इसी कड़ी में आइए अब आपको अगला गीत हम सुनवाएं फिल्म पीके से। श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ें हैं, शांतनु मोहित्रा का संगीत और अमिताभ वर्मा की शब्द।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं मोहित चौहान की आवाज़ में। कौसार मुनीर का लिखा यह गीत सुनिए फिल्म धूम 3 से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है जूलियस पैगजैम जोशीले ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।

श्रोताओं, आप सभी के लिए जनहित में जारी सूचना। भोपाल नगर पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, इंस्टाग्राम आदि पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक, धार्मिक, जातीय या सांप्रदायिक भावना को आहत करने वाले संदेश, फोटो, वीडियो अथवा ऑडियो का प्रसारण, शेयर या फॉरवर्ड न करें। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने तथा कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले संदेशों पर प्रशासन की सतत निगरानी है। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भोपाल नगर पुलिस की अपील है, सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी और सजगता के साथ करें तथा शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। नगर पुलिस भोपाल, मध्य प्रदेश। सूचना समाप्त हुई।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के सबसे बड़े दुग्ध संघ सांची ने भी दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण का अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार और प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए। बैठक के बाद सभा को संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। ब्रिटेन ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट पर एक जहाज को जब्त कर लिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य के पास फुजैराह बंदरगाह के करीब इस जहाज पर अनाधिकृत कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक करने के लिए गांवों में एक अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi today met foreign ministers attending the BRICS foreign ministers meeting in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, South African Foreign Minister Ronald Lamola, and Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira, among others, today called on Prime Minister Narendra Modi. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers meeting underway in New Delhi. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov briefed the Prime Minister on progress in bilateral cooperation since the meeting with the President Vladimir Putin and Mr. Modi during the 23rd India-Russia annual summit in December. The two leaders also discussed regional and global issues, including the situations in Ukraine and West Asia. Prime Minister Modi reiterated India's position that dialogue and diplomacy remain the best way forward and asked Mr. Lavrov to convey his greetings to President Putin. Earlier in his opening remarks, External Affairs Mr. Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order. He said many countries continue to face challenges on energy, food, fertilizer and health security, and BRICS can help them respond more effectively.
3: We meet at a time of considerable flux in international relations, ongoing conflicts, economic uncertainties and challenges in trade and technology and climate are shaping the global landscape. There is a growing expectation, particularly from emerging markets and developing countries, that BRICS will play a constructive and stabilizing role. In this background, our discussions today are an opportunity to reflect on global and regional developments and to consider practical ways to strengthen our cooperation.
2: Dr. S. Jaishankar said recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
2: The Election Commission today announced Special Intensive Revision SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. This phase will cover Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jharkhand, Odisha, Maharashtra and all northeastern states except Assam. Three UTs will also be covered in this phase: NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. With this, the SIR of the electoral rolls will cover the entire country in Phase 3, except Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh. Putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days, Congress today announced the name of V.D. Satishan as the new Chief Minister of Kerala. With the announcement, the Congress-led UDF will proceed to form the government in the state. In Tamil Nadu, AIADMK General Secretary Idappadi Palaniswamy today met the State Governor Vishwanath Arlekar and gave him a petition regarding the faction of AIADMK MLAs led by SP Velumani. The former Chief Minister appealed to the Governor to take up the issue with Speaker J.C.D. Prabhakar. The issue is that 25 AIADMK MLAs in the faction led by SP Velumani voted for the TVK government, not heeding the whip issued by O.S. Manian to vote against the TVK government. Delhi government will start the Mera Bharat, Mera Yogdan campaign from tomorrow in line with Prime Minister's appeal. Addressing the media in Delhi, Secretariat Chief Minister Rekha Gupta said, under the campaign, all Delhi government offices except essential services will operate on a work from home for 2 days in a week. US President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping today held talks in Beijing. Both leaders stressed on cooperation over confrontation despite tensions over trade, technology and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Benchmark domestic equity indices surged over 1% today, led by broad-based buying across most sectors. The Sensex gained 790 points to close at 75,399. And that is the end of this news bulletin.

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया

की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म ओम शांति ओम से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल के स्वर हैं, जावेद अख्तर के लिखे बोल और विशाल शेखर का संगीत।

श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सिंघम से। अजय अतुल का संगीत और स्वानंद किरकिरे के बोल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिंग इज किंग से। राहत फ़तेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़, प्रीतम का संगीत और मयूर पुरी के लिखे बोल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म राज 2 से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, कुमार के लिखे बोल और राजू सिंह का संगीत।

0: श्रोताओं, फिल्म राज 2 के ऐसे गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्का

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
2: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा,
3: डीडी डायरेक्ट,
2: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
3: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
3: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
2: आज ही करें कनेक्ट
3: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा, डीडी डायरेक्ट।
4: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से। खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों।
1: जागृति शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग ले रहे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा सहित अन्य विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इससे पहले अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20

0: टी लचीलापन नवाचार सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात नीदरलैंड्स स्वीडन नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजहा जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज MSV हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में AIADMK के महासचिव एडापड्डी के पलनीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। इसके अंतर्गत आज सुनिए महिलाओं में थायराइड की समस्या और निदान विषय पर डॉक्टर तृप्ति सक्सेना की भेंट वार्ता। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8 किया जाएगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 और 9:30 पर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा रात्रि 10 और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज 10:30 पर सुनिए पंडित विदुर मलिक का केदार राग पर ध्रुपद गायन। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल यानी शुक्रवार 15 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, सुबह की सुनहरी शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ सुबह 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। कार्यक्रम गांधी चर्चा का समय होगा सुबह 9:15 और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 9:30 पर। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम महिला संसार, जिसमें कल होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का यामिनी बिलावल राग पर सितारवादन 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11:00। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12:00, दोपहर 2:30 और रात्रि 10:00 किया जाएगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र का दूसरा भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2:00, शाम 5:33, 6:30, 8:15 और 9:45 पर। शाम 6:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण 7:21 पर किया जाएगा। रात्रि 8:00 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, कार्यक्रम खेल जगत का प्रसारण रात्रि 9:30 पर किया जाएगा। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पर देवेंद्र खुराना की वार्ता और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनेंगे पंडित गोपाल शंकर मिश्रा का सितारवादन, राग होगा जयंत मल्हार। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में एलपीजी और

0: आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम, कल से 2 रुपए प्रति लीटर होगा महंगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने बैठक में कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था की नींव है और हाल के संघर्षों ने कूटनीति की अहमियत को और साबित किया है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और तकनीक का उपयोग सुशासन के लिए करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 6 दिन के विदेश दौरे पर निकलेंगे। वे यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यात्रा की शुरुआत यूएई से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलेंगे। नॉर्वे में वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जो 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा होगी। इस पूरे दौरे में रक्षा, व्यापार, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी नहीं है। पिछले 3 दिनों में 1,40,00,000 एलपीजी बुकिंग में से 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। वहीं मार्च से अब तक 7,00,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 7,50,000 नए उपभोक्ताओं ने पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है।
1: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय विमानन मंत्री राम मोहन नायडू से मिलकर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और प्रदेश को विमानन क्षेत्र में नेशनल मॉडल बनाने के लक्ष्य पर चर्चा की। डॉ. यादव ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सौजन्य भेंट की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी शिष्टाचार मुलाकात की। प्रदेश में महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हैदराबाद की भार्गवी हेल्थ केयर के बीच एमओयू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत रीवा जिले में 25 से 65 साल की करीब 10,000 महिलाओं को एचपीवी डीएनए आधारित जांच की जाएगी। एएनएम स्टाफ नर्स, सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। भार्गवी हेल्थ केयर जांच और उपचार के लिए तकनीकी सहयोग देगी और मास्टर ट्रेनर्स की टीम भी तैयार करेगी। इस पहल का मकसद प्रदेश में सर्विकल कैंसर की समय पर पहचान और प्रभावी इलाज सुनिश्चित करना है। प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 625 किलोमीटर लंबा टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये 4-लेन सड़क मार्ग पेंच, काना, बांधवगढ़ और पन्ना टाइगर रिजर्व को आपस में जोड़ेगा। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जंगल वाले इलाकों में अंडरपास और स्लो ट्रैफिक जोन बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर से पर्यटकों को एक ही ट्रिप में चारों बड़े टाइगर रिजर्व घूमने की सुविधा मिलेगी। दिसंबर 2027 तक यानी सिंहस्थ 2028 से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देवास जिले के टोंककला के पास आज सुबह करीब 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। जिला अस्पताल के आरएमओ के मुताबिक हादसे में 3 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। अमूल और मदर डेयरी के बाद अब प्रदेश के

सबसे बड़े दुग्ध ब्रांड सांची ने भी दूध दो रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। नए दाम कल से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे। सांची ने करीब एक साल बाद दाम बढ़ाए हैं। इससे पहले 7 मई 2025 को बदलाव हुआ था। भोपाल में सांची की रोजाना 7.5 लाख लीटर से ज्यादा बिक्री होती है। दाम बढ़ने की वजह पशु आहार, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग की बढ़ती लागत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कुछ परीक्षाओं की तारीखें बदल दी हैं। ये बदलाव CUET UG 2026 की परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है। 14 मई को होने वाली कृषि, गृह विज्ञान और अकाउंटेंसी की परीक्षाएं अब 19 मई को होंगी। वहीं 21 मई को होने वाली गणित और मनोविज्ञान की परीक्षाएं 26 मई को ली जाएंगी। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नरेला विधानसभा की द्वारका नगर स्थित प्राचीन बावड़ी की सफाई में श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि बावड़ी, कुएं और तालाब हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन्हें बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसके बाद मंत्री सारंग ने चांदबड़ में संपर्क अभियान के तहत बिजली सेवा शिविर का शुभारम्भ भी किया। प्रदेश में अब हर घर में गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग अलग डस्टबिन में देना अनिवार्य होगा। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे ने सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। खुले में कचरा फेंकने, प्लास्टिक जलाने और सार्वजनिक जगहों को गंदा करने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा। बात मौसम की। प्रदेश में रिकॉर्ड गर्मी का दौर शुरू हो गया है। इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट जारी है और रात में भी गर्म हवाएं चलने की चेतावनी है। झाबुआ, खरगोन, खंडवा, देवास, सीहोर समेत दर्जन भर जिलों में भी लू का असर रहेगा। वहीं अशोकनगर, विदिशा, सागर, छिंदवाड़ा और सिवनी में आंधी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग के अनुसार 17 मई तक प्रदेश के आधे हिस्से में गर्मी का अलर्ट बना रहेगा। अब बात खेल की। IPL में अब से कुछ देर में धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। लगातार 4 मैच हार चुकी पंजाब पर जीत का दबाव है। मुंबई ने पिछले मैच में बेंगलुरु को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि आखिरी ओवर में भुवनेश्वर के छक्के से बेंगलुरु जीत गई थी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के 25वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में आज नव आरक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर DGP कैलाश मकवाना ने बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। झाबुआ जिले में बिजली संबंधी शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए बिजली विभाग ने 3 शिफ्टों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। खंडवा में आयोजित स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक में कलेक्टर ने स्वच्छता, जल संरक्षण और नशा मुक्ति जैसे सामाजिक अभियानों में जनभागीदारी को आवश्यक बताया। नीमच जिले के ITI मनासा में 21 मई 2026 को युवा संगम रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। बैतूल जिला कलेक्टर ने दूरस्थ वन ग्राम झिरिया डोह में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। निवाड़ी जिले में धरती आबा ग्राम जनजातीय उत्कर्ष अभियान और आकांक्षी विकास खंड की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। और सीहोर जिले के जिला खाद्य विभाग द्वारा राशन हितग्राहियों को मई और जून दोनों महीनों की राशन सामग्री एकमुश्त प्रदान की जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। कल से 5 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। देश में LPG और ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। 3 दिन में 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित। देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत। फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का किया ऐलान। और अमूल मदर डेयरी के बाद सांची ने भी बढ़ाए दूध के दाम। कल से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सगे भैया और बहन का गीता बहन और
1: रूपेश भैया की राम राम।
0: और भैरों कैसे हैं आप? हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो गर्मी के मौसम में आपको सुरक्षित रख रहे होंगे घर के भीतर। और हम तो यही कहेंगे कि भैया इतनी कसके गर्मी पड़ रही है, तेज गर्म हवाएं चल रही हैं, तो जब अपन का जो मुलक जरूरी काम हो तब ही अपन को घर से निकलना चाहिए।
1: सही बात
0: है ना। और अब देखा है मौसम को असर तो अपन सब ही पे पड़ते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि अपन किसान भैया जो है वो खेती बाड़ी के सिंह पशु भी पालत है,
1: है
0: ना। और जिस तरीके से गर्मी को असर अपन पे पड़ रहा है, बेजान पशुओं पे भी पड़ रहा है, तो मुलक जरूरी है कि गर्मी के समय में अपन अपने पशुओं को भी ध्यान रखें, इन्हें गर्मी से बचाएं, समय समय पर साफ सुथरे पानी भी बात रहें और गर्मी में खुलू नहीं छोड़े।
1: सही है
0: ना। और देखो अपने तो कछु भैया जो है खेती बाड़ी के सिंह है, पशुपालक है, भी इनके सहयोगी मित्र भी होते हैं और इन्हें आर्थिक मदद भी देते हैं। जैसे इनके दूध से अपन दूध बेच भी देते हैं, पहलाने उपयोग में रख लेते हैं। तो कछु भैया तो ऐसे भी हैं जो सह व्यवसाय के रूप में पशुपालन कर रहे हैं।
1: हाँ बहन, तो ऐसे ही जय की लाना, एक अपन बहुत अच्छी अपन चर्चा कर रहे थे जो विषय है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसको उद्देश्य है देसी गायों और भैंसों की उत्तम नस्लों का संरक्षण संवर्धन और विकास करना।
0: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
1: बात करें तो जय योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में भैया थी और मिशन को संचालन भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा करो जाते
0: है। और देखो भैया जाको उद्देश्य जो है वो यही है कि देसी नस्ल की गायों के संरक्षण संवर्धन और उत्पादकता जो है वैज्ञानिक तरीका से बढ़ावा जाए। और ये योजना राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत 21-22 से 25-26 तक मतलब पुनर्गठित करी गई है। और अपने किसान भैया बहन की जैसे आय बढ़ेगी और देसी नस्ल को विकास होगा, स्वदेशी गायन की नस्लन को संरक्षण होगा और सुधारकरण भी होगा। सिंगे भैया दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी जिसे क्या होगा कि अपने किसान भैया की आमदनी बढ़ेगी और गोकुल ग्राम की स्थापना की भी
1: जगह हाँ,
0: कृत्रिम गर्भाधान किसानन के घर तक पहुँचेगा, यानी आपको जाके लाने जानो नहीं पड़ेगा बल्कि वो आपके घर आएंगे।
1: IVF तकनीक माने विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बछड़े भी तैयार करेंगे।
0: बिल्कुल। तो जैसे कहा होगा भैया कि अपन देख रहे हैं कि अपने गांव के मुलक से भैया बहन शहर की ओर पलायन करते हैं।
1: हाँ।
0: तो ये कार्यक्रम के माध्यम से अपने जो बेरोजगार भैया बहने हैं बिना गाँव में ही मुलक से काम मिल जाएंगे और जाके लाने में प्रशिक्षण भी दो जाओगे, प्रशिक्षण के बाद ही वो अपने जैसे कार्यक्रम से जुड़ के अपना काम कर सकते हैं। तो भैया हम भी यही कहने हैं कि आप भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के हिस्सेदार बने, ये योजना को लाभ लें, पशुओं की अच्छी नस्ल आपको मिल सके, ये बात को आप ध्यान रखें। और देखो जगह पर पशु अच्छे होंगे तब ही अपनी खेती बाड़ी के काम भी अच्छे से कर सकेंगे। और फिर अपन जौन उद्देश्य से इन्हें पाल रहे हैं, मान लो अपन डेयरी उत्पादन के लिए पाल रहे हैं, तो वो भी तब ही सफल हो जब अपन इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, इन्हें संतुलित पशु आहार नहीं देंगे, समय पर इनका टीकाकरण नहीं करवाएंगे, इनके रहवे की व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे, तो अपने पशु जो बीमार भी हो जाएंगे और काम भी नहीं करेंगे। और जो अपना उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाए, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुलक जरूरी है कि अपन जो उद्देश्य बातन को ध्यान रखें और राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जुड़े। भैया अपन आगे और बतियाएंगे पर पहले सुनाते हैं जरूरी संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखो भैया, अपन ने संदेश सुनो तो जो बात को जरूर ध्यान दें कि जनगणना कार्यक्रम चल रहा है और जनगणना करी जा रही है। लोग अपन जब घर में आए तो इनको आपको सहयोग करना है। जो जानकारी वो अपन से मांग रहे वो सही सही जानकारी अपन और उनको देना है। कायदे की अगर अपन कहीं गलत जानकारी देंगे तो जो जनगणना है वो सही तरीका से नहीं हो पाएगी। और जाके लाने जब जनगणना हो जाता है वही के बाद में मुलक सी योजनाएँ चलाई जाती हैं, विचार विमर्श होता है। तो भैया ये बात को जरूर ध्यान रखें, पर ये बात को भी ध्यान रखें कि कोई फेक धने की मतलब बनावटी लोग आके आपसे अगर बैंक अकाउंट वगैरह जाके जानकारी लेने चाहते हैं तो ये बात को ध्यान रखें कि जनगणना में आपके खाते को आधार को नहीं पूछेंगे, है ना। तो ये बात को जरूर ध्यान रखें। और देखो अब जय के बारे में अपन तनिक बात कर रहे थे, सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग नहीं करें। कैसे कि आज अपन देख रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग है बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा है। लोग अपने घर से थैला वैला लेके जाते नहीं हैं और बाजार में जाके दुकानदार भैया से कहते हैं कि भैया सामान रखने के लिए थैलियाँ दे दो। और ये थैलिया इतने खतरनाक रसायन से बनाते हैं भैया कि अगर नेक्स कण भी अपने भीतर जाकर चलो जाते हैं तो अपन बीमार कब हो गए पता ही नहीं चला।
2: हाँ बहन, और आप सही कह रही हैं। और अपन बात करने के लिए मतलब कौन कौन सी चीजें होते हैं ऐसी प्लास्टिक सामग्री जो बार बार उपयोग के बाद बेकार हो जाते हैं और पुनः उपयोग में नहीं लाई जाते, भाई अपन सिंगल प्लास्टिक यूज कहते हैं। और जहाँ में अपन जैसे कि देखें कि प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक कप और प्लेट, स्टोव, प्लास्टिक चम्मच और कांटे, पानी की छोटी बोतलें, थर्माकोल सामग्री, प्लास्टिक झंडे, सजावटी सामान, ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं जो आसानी से नष्ट नहीं होते हैं और बरसों तक जमीन और पानी में जो बनी रहते हैं।
1: और देखो जाके कहा है जी अपन और उन पे तो बुरा प्रभाव छोड़ते ही है। अगर कोई तरल पदार्थ अपन थैली में रख के लाए, दही, दूध, तेल, तो वाकई कण अपने भीतर ये जाम में मिलके पहुंच जाते हैं। जब ये जल में मिल जाते हैं तो जल को प्रदूषित तो कराती है। सिंगे जल जीव है, जो जलीय जीव है बिनके जीवन के भी संकट बनो रहते हैं। और भूमि में गिर जाते हैं तो भूमि को बंजर कर देते हैं, क्योंकि सालों साल तक ये प्लास्टिक गलत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अपन और उनको ये सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे कम करत भाई बंद करना है। जाके स्थान पे आप पहले की तरह मिट्टी के बने हुए कुल्लड़ को इस्तेमाल करें चाय के लाने, डबुलन को इस्तेमाल करें पानी के लाने, और छैला के पत्ते से बने पत्तलन को इस्तेमाल करें भाई भोजन के लाने।
2: और बहन, भारत सरकार द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए हैं, कई सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध भी लगा हुआ है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
2: जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, कपड़े और जूट के
1: थैले जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं,
2: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम लागू भी करवा हुआ है।
1: और देखो जो सब सही चीजें जो होते हैं ना भैया वो जन भागीदारी से होते हैं, कौन एक के द्वारा नहीं होते हैं। तो अपन और उनको ध्यान रखना है कि अपन को साझेदारी में काम करके अपने देश को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। और देखो जैसे कहा हो कि एक तरफ तो अपन जल भूमि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा, संतुलित होगा, जलीय जीवन के जीवन पर जो संकट है वो नहीं होगा। सिंगे जो बेरोजगार भैया है जो मट्टी को काम करते थे या डबूले पत्ते बनाते थे, उन्हें भी रोजगार मिलेगा, लिफाफन से भी पेपर को भी सही इस्तेमाल हो जाएगा और जूट को भी थैले पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो रूपेश भैया, जय के सिंह बेरा चलिए चौपाल कार्यक्रम से चलवेगी। सो सगे भैया बहन का जय, गीता बहन और
2: रूपेश भैया की
1: राम राम, जय जवान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा है?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: जय जवान जय किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों का, रूपेश भैया और
5: गीता बहन की, राम राम।
4: तो भैया बहनों, आज अपन सबसे पहले बात कर रहे थे कि कृषि में आधुनिक तकनीक अपना है।
5: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रूपेश भैया, कैसे कि देखो अपन जो देख ही रहे हैं कि जो अपने किसान भैया हैं वो खेती बाड़ी कराते हैं, अतिरिक्त आमदनी के लिए सह व्यवसाय भी कराते हैं, और अपन ये भी जानते हैं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था में अपने किसान भैया अपने अन्नदातन को महत्वपूर्ण योगदान है। जब वो किसान खुश होंगे तभी तो अपन भी खुश होंगे और अपना देश भी तरक्की करेगा।
4: सही बात है।
5: और जय की लाना, देखो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुलक से ऐसी लाभकारी कल्याणकारी योजनाएँ बनाई हैं जिनको लाभ लेके अपने किसान भैया जो है अपने खेती को जो लागत है वो कम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और खुशहाल किसान बन सकते हैं।
4: तो बहन जय की लाने, हम भैयाओं को ये बताएंगे कि अपन मतलब खेती में नई नई तकनीकें अपनाएं और तकनीकों को अपना के अपने बहुत से किसान भैया अच्छे लाभ ले रहे हैं। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं सिंचाई में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई, जब तकनीक से पानी की बचत भी होता है, संग संग फसलों की आवश्यक मात्रा में भी पानी मिलता है।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
4: और उन्नत बीजों का अपन उपयोग करें, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज, ज्यादा उत्पादन और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले अपन बीजों का उपयोग करें।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी आते हैं पानी की समस्या बढ़ जाते हैं, पीवी के लाने पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में खेती बाड़ी के लाने पानी मिलना कितने मुश्किल पड़ेगा, और खेती बाड़ी में मतलब पानी के बिना खेती हो नहीं सकता है। तो अपन और उनको ऐसे अपने किसान भैया को ऐसी उन्नत किस्मन को चुनाव करना चाहिए जो कम से कम पानी में कम से कम समय में पक के तैयार हो जाए, उत्पादन अच्छे दें और लागत कम आए। अब आप जैसे बता रहे हैं कि ड्रिप सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, तो जिनके माध्यम से क्या है पानी की बहुत से मतलब बचत होते हैं, बहाव पद्धति से जो पे किसान भैया सिंचाई कराते थे वैसे बहुत ही बेहतर है, जहाँ में जड़न तक पानी पहुँचाता है और कम समय में भी मतलब जो हरियाली है वो पे खेतन की बनी रहते हैं।
4: सही,
5: कम से कम पानी में अपन ज्यादा से ज्यादा रकबे को सींच सकते हैं।
4: और बहन कृषि यंत्रों का भी उपयोग, जैसे कि मान चलो ट्रैक्टर, सीडल, हार्वेस्टर, पावर स्प्रेयर जैसे अपन आधुनिक उपकरण समय पे उपयोग करें तो जैसे मेहनत और समय दो ही अपने बचत है।
5: बिल्कुल सही कह रहे हो, जिन आधुनिक कृषि यंत्र को उपयोग करवे से समय की बचत होते हैं, श्रम की भी बचत होते हैं और समय पे अपना पूरा काम हो जाता है। और देखो अपन तो देख रहे हैं कि आज के टाइम पर कितने अच्छे अच्छे कृषि यंत्र आ रहे हैं कि वो एक ही बार हार्वेस्टर आ रहा है, कंबाइन हार्वेस्टर, जिसे फसल की कटाई भी हो जाते हैं, भूसा भी अलग में भर जाते हैं और नरवाई भी होता है, अपन खेत में मिला रहे हैं तो वो खाद के रूप में बन जाते हैं। जई तरीके से अपने किसान भैया को रासायनिक खादन की जगह जैविक खादन को भी इस्तेमाल करना चाहिए।
4: सही बात है।
5: और कृषि के क्षेत्र में अगर अपन देखें तो आजकल भैया ड्रोन जो आ गया है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, कैसे कि एक मानव रहित यंत्र होता है और जहाँ से अपन बोनी भी कर सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं कीटनाशकन को, और सीधे खेतन से मंडी तक भी अपन अपने जो उत्पाद हैं बिना लेके आ सकते हैं, जैसे समय भी बचत है, ताज़ी भी रहते हैं वो और इनकी कीमत भी अच्छी मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर अपन खेती को कम बजट या जीरो बजट की खेती बना

0: बनाना है तो बाकी लागत को कम करना होगा।
1: वैन और मोबाइल और इंटरनेट की तकनीक से भी अपन खेती में
0: बदलाव
1: ला सकते हैं। किसान मोबाइल ऐप, इंटरनेट के माध्यम से मौसम, बाजार भाव,
0: हाल पता चल जाते
1: हैं।
0: पल पल की खबर अपन ले सकते हैं कि मौसम को मिजाज बिगड़ने वाला है, तो खुले में अगर फसल पड़ी है तो भाई अपन सुरक्षित कर ले। मंडी को भाव का चल रहा है, हर कौन से अपन को का समय पे कौन से काम करने हैं खेती बाड़ी में, है ना, ये सारी बातें
1: तकनीकी जो अपन बात कर रहे हैं। लाभ की बात करें तो फसल उत्पादन में वृद्धि होते हैं, पानी और समय की बचत होते हैं,
0: बिल्कुल
1: खेती की लागत में कमी आता है, रोग और कीट नियंत्रण में भी सहायता मिलता है, किसानों की आय में बढ़ोतरी होता है और कृषि कार्य आसान और तेज बनाता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया देखो, ये तो अपन ने बात करी कि कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को, इनकी बारीकियों को समझ के अपन किसान भैया को भी इन्हें अपनाना चाहिए, और अपने मुल्क से किसान भैया ऐसा कर भी रहे हैं, आधुनिक तरीका से खेती कर रहे हैं, आधुनिक तकनीकी को अपना रहे हैं वो। तो ये तो अपन ने बात करी कृषि में, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी। और देखो जय के बारे में अपन कछु बात कर रहे थे कि अपन जो किसान भैया जिसे अपन पहले ही बात कर रहे थे, भैया जो अपन मुर्गी पालन कर रहे हैं, और अपन देख रहे थे कि मौसम को सर समय पे पड़ा थे, अब जो टाइम पे और जो उनका आहार है वो संतुलित बनो रहे, का मैंने दाना पानी खाना चाहिए जैसे, और जो उनका आहार है वो संतुलित बनो रहे, का मैंने दाना पानी खाना चाहिए जैसे विषय है। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल, वार्ताकार भैया हैं डॉक्टर ए के श्रीवास्तव जी, और जिनसे बात कर रहे हैं भैया सोहन सिंह। तो चलो सुनाते हैं जी भेंट वार्ता।
2: सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन करते हैं, उद्यानिकी करते हैं, मछली पालन करते हैं, और जहाँ पर हमारे किसान भाइयों को सुविधाएं होती हैं वहाँ पर मुर्गी पालन भी करते हैं। गर्मियों के मौसम में मुर्गी पालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों को किस प्रकार सर्वाइव करें, किस तरह जीवित रखें और उनसे उत्पादन लेते रहें, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, जहां पर हमारे मुर्गी पालक भाई मुर्गियां पाले हुए हैं, वो गर्मियों के मौसम में उनकी किस तरह देखभाल करें जिससे हमारी मुर्गियां स्वस्थ रहें और उन्हें उत्पादन अधिक मिले।
3: सबसे पहले सभी सम्मानी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। गर्मियों में मुर्गी पालना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में विशेषकर शिवपुरी जिले में और मध्य प्रदेश में काफ़ी गर्मी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में मुर्गियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है। हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में मुर्गियां दो तरह से किसान भाई पाल रहे हैं, एक संगठित रूप से मुर्गी घर बना के मुर्गियां पाल रहे हैं बड़ी मात्रा में, दूसरा असंगठित रूप से अपने घर के पीछे या आगे छोटी छोटी संख्या में मुर्गियां पाल रहे हैं। तो मैं पहले संगठित क्षेत्र की बात करता हूँ। तो संगठित क्षेत्र में जब मुर्गी पालते हैं तो हमारे पास एक पक्का घर होता है या कच्चा घर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हम वातावरण को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी जो प्रबंधन की प्रक्रिया है उसको तो हम बदलाव ला सकते हैं कि मुर्गी घर की व्यवस्था हम गर्मियों में किस ढंग से करें। सबसे पहले जिनके हमारे पास जो मुर्गी घर हैं उनमें जो टीन शेड है या सीमेंट सीट ऊपर लगी हुई है उनके ऊपर गर्मी से बचाव के लिए हम पत्ती या टहनियां डाल सकते हैं जिनकी मोटाई कम से कम आधा फीट हो, ताकि वो गर्मियों में बहुत तेजी से गर्म ना हो और अंदर का वातावरण ठंडा रह सके। साथ ही साथ मुर्गी घर के चारों ओर जहाँ पर जाली लगाई हुई है आपने, वहाँ आप टाट के बोरे लगा सकते हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 3 फीट के आसपास रखें, और समय समय पर गर्मी में दोपहर के समय स्पेशली 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उन पर आप 2-3-4 बार पानी का छिड़काव करें, ताकि अंदर जाने वाली हवा ठंडी हो और मुर्गियों को सांस लेने में आसानी हो, उनको दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ जब हम मुर्गी घर के अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं कि मुर्गी की बिछावन, जिसको हम बोलते हैं बुरादा, बुरादा की मोटाई गर्मी के दिनों में 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर हम 1 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो मुर्गियों को बुरादा गर्म होने लगेगा जिससे उनको परेशानी होगी। मुर्गी घर के अंदर पानी और दाना हम लगातार उनको खिलाते हैं। तो सामान्य तौर पर जहाँ छोटे चूजे हैं जिनकी उम्र अभी 10 दिन से कम है, उनको हमें छोटे बर्तनों में पानी पिलाना चाहिए और हर 100 चूजे के पीछे कम से कम 3 बर्तन पानी के लगा के रखना चाहिए। इसी प्रकार जिनमें 10 दिन से ज़्यादा उम्र के चूजे हैं, उन मुर्गी घरों में हमको हर 100 चूजे के पीछे कम से कम 2 पानी के बर्तन लगा के रखें। इस तरह से पानी के बर्तनों की कमी

0: ना होने पाए, कम से कम इतना, अगर जरूरत पड़े तो हम इससे ज्यादा भी लगा सकते हैं। गर्मियों में दोपहर के समय पानी बहुत तेजी से गर्म होता है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप लोग समय समय पर पानी बदलते रहें, क्योंकि गर्म पानी होता है जब हम नहीं पी सकते तो निश्चित तौर पर हमारी मुर्गियां भी नहीं पी सकती। मुर्गियों के शरीर में पानी की मात्रा लगभग 70% होती है, जो आपका वजन आता है जिसके अनुसार आप उन मुर्गियों को बेचते हैं उसका मुख्य जो हिस्सा है वो पानी ही है। अगर पानी की कमी होगी तो आपकी मुर्गियों की वृद्धि भी रुक जाएगी और आपको मिलने वाला वजन देर से आएगा, जिससे आपको नुकसान होगा। गर्मियों में क्या होता है, मुर्गियां जब दाना खाती हैं, दिन के समय जब वो दाना खाती हैं, तो दिक्कत ये होती है कि वो बहुत तेजी से दाना खाती हैं और उनको बहुत जितना दाना खाती हैं उसके दोगुनी मात्रा, ढाई गुनी मात्रा में लगभग पानी चाहिए होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मुर्गियां बहुत तेजी से दाना खाती हैं और उनमें चयापचय की रेट बढ़ जाती है। चयापचय यानी मेटाबॉलिक रेट, जिससे शरीर में खाना पचा के उनका शरीर का निर्माण होता है, उसकी वजह से भी कई बार मुर्गियां मरने लगती हैं। कि गर्मी के दिनों में आप एक काम तो ये कर सकते हैं, अगर गर्मी बहुत ही ज्यादा है जैसा कि मई जून में हमारे क्षेत्र में होता है, आप दिन में 3-4 घंटे के लिए दाना वहां से हटा सकते हैं और इसके उलट उनको रात में रोशनी की व्यवस्था करें ताकि जब ठंडक होती है उस समय मुर्गियां खाना खा सकें। कि यदि आप दाना नहीं भी हटाना चाहते तो आप दाने पर हल्का सा छिड़काव कर सकते हैं पानी का, जिससे दाने में जो अपना खुद का जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो कम रहेगी और मुर्गियां उसको खा सकती हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उस समय पता लगा सकते हैं मुर्गियों को देख के, मुर्गियाँ मुँह खोल के सांस लेने लगती हैं और बहुत तेज़ी से वो हाँपने लगती हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि मुर्गी घर में तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि आप मुर्गियों के ऊपर सीधे पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं। अगर आप सीधे पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी का छिड़काव ना करें ताकि जो बुरादा कीचड़ में ना बदले। अगर आपको लगता है कि आपकी मुर्गियों में गर्मी की वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई तो आप एक एक मुर्गी को उठा के ठंडे पानी में भी डुबो डुबो के निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि उनके सर के ऊपर भी आप पानी डाल सकते हैं। और अमूमन मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि गर्मियों में मुर्गियाँ जो है 2 बजे से 4, 5, 6 बजे तक स्वयं मृत्यु दर बढ़ जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप दाना वहाँ से हटाएं, उनको रात में दाना खाने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करें। और ऐसी मुर्गियाँ जो बीमार हो रही हैं इस कारण से, इसको सामान्यतः हीट स्ट्रोक कहा जाता है या हीट स्ट्रेस, गर्मी की वजह से परेशानी आती है, इसमें आप तुरंत ही उनको ठंडे पानी में डुबाने की व्यवस्था करें। डुबाएं, केवल सर बाहर रखें, बाकी पूरा शरीर डुबा के बाहर निकालें और फार्म के चारों ओर से आने जाने के लिए जो वेंटिलेशन है, जो हवा का आवागमन है, वो प्रॉपर कर दें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां हमारा फार्म है वहां हम इस तरह के पेड़ लगाएं ताकि आगे चल के वो छाया दे सकें, ताकि हमारे फार्म के ऊपर गर्मी के दिनों में ठंडक रहे और उनसे आने वाली हवा जो है वो ठंडी मिले। जो लोग मुर्गी पाल रहे हैं संगठित क्षेत्र में, वो भले ही गर्मी हो या सर्दी हो, टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि सर्दी में भी और गर्मी में भी, दोनों में ही अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता मुर्गियों की कम हो जाती है, जिससे उन्हें बीमारी होने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। तो आप उनमें टीकाकरण समय से करवाएं। जब भी पानी पिलाएं तो शुद्ध और स्वच्छ पानी पिलाएं। सीधा तरीका इसका यह है कि जो पानी आप पी सकते हैं वही पानी आप मुर्गियों को पिलाइए। साथ ही साथ आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं बहुत सारे वाटर सैनिटाइजर, पानी से कीटाणु हटाने वाली दवाइयाँ, उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं। और जो भी दवाई आप खरीदें उस पर लिखा होता है कि कितनी मात्रा, कितने लीटर पानी मिला के आपको उनको देनी है। गर्मियों में ये अवश्य दें और लगातार दें। किसान भाई गलती ये करते हैं कि शुरुआती दिनों में तो पानी साफ करने वाली दवाई का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे जैसे मुर्गियाँ उनकी बड़ी होती जाती हैं तो वो ये बंद कर देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आपने मुर्गी घर में मुर्गी है, आप हमेशा शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी लें और उसमें कीटाणुनाशक दवाई मिलाने के बाद ही उनको दें। कम संख्या में असंगठित रूप से जो मुर्गी पाल रहे हैं, जिनको अपन देसी मुर्गियाँ भी बोलते हैं, जो अपने घर के बाहर पाल रहे हैं, उनमें गर्मी के दिनों में सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मुर्गियों को जैसे ही धूप निकलना शुरू होती है और जब तक धूप शाम को ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप उनको धूप में ना निकालें। आप ऐसी व्यवस्था करें कि उनको बाहर चरने के लिए छायादार जगह में उनको रखें, ताकि उनके ऊपर सीधी धूप ना लगे तो वो हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचे रहेंगे। कि आप बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध पानी उनको दें, जो पानी आप पी सकते हैं वही पानी उनको पिलाइए। कि हमारी जो देशी मुर्गियाँ हैं इनमें भी आप टीकाकरण, विशेषकर रानीखेत और फाउल पॉक्स, ये दो बीमारियों का टीकाकरण आप करवाएं, क्योंकि देसी मुर्गियों में जो वृद्धि है वो काफ़ी लंबे समय में होती है और वो 4, 5, 6 महीने तक हमारे पास उपलब्ध रहती हैं, इसलिए इनमें फाउल पॉक्स एक बीमारी, उसका भी टीकाकरण आप लोग करवा लीजिए करें।
1: क्योंकि जब पक्षी कमजोर हो जाते हैं तो जो बीमारियाँ हैं उनकी फैलने की संभावना प्रबल हो जाती है।
0: अगर मुर्गी के अंदर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे भी कम होगी तो स्वाभाविक है कि उसमें छोटी छोटी बीमारियां वो उसके जो आसपास हैं वो अपना घर बनाने लगती हैं और बड़ी आसानी से वो मुर्गियों को अफेक्ट करती हैं, जिससे उनमें ये बीमारियां होती हैं और किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे मुर्गी पालक भाइयों को गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की किस तरह देखभाल करें जिससे हमारी मुर्गियाँ स्वस्थ रहें और उनसे अच्छा उत्पादन लें, इसके बारे में जानकारी दी। और इस जानकारी को हमारे मुर्गी पालक भाई मुर्गी पालते समय निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे और जो आपने उपाय बताए हैं उन्हें अपनाएंगे और अपने जो मुर्गी हैं, पक्षी हैं, उन्हें स्वस्थ रखेंगे, उनसे अच्छा उत्पादन लेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया। अभी आपने सुनी जो भेंट वार्ता, जिसको विषय है तो गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल कैसे करें, जहां मैं जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ए के श्रीवास्तव और उनसे बातचीत कर रहे थे श्री सोहन सिंह। तो भैया बहनो, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी बताई कि मुर्गियों की अपन देखभाल कैसे करें, उन्हें कैसे पालें, उन्हें क्या चीज खिलाएं, का का फायदा है। तो बहन और आपका बताना चाहूंगी मैं भैया का, जी
3: देखो हम तो ये कह रहे हैं कि देखो अपन जब मुर्गी पालन कर रहे तो आप उद्देश्य यही है ना कि बस अपन को लाभ मिले।
2: सही बात।
3: और जब अपन मुर्गियों के पालन पोषण में ध्यान नहीं देंगे तो अपनी मुर्गियाँ जो है बीमार हो जाएंगी।
2: हाँ,
3: और भगवान ना करे अपनी लापरवाही में बीमारी के कारण या गर्मी तेज के कारण मर भी जाए तो कितने नुकसान हो वो। तो अपन तो चाहते नहीं है कि अपने भैया बहन को कोई नुकसान हो। तो हमारा कहना जो है कि अगर हमारे मुर्गी पालने वाले भैया हैं जो मुर्गी पाल रहे, वो जिन बातों को जरूर ध्यान रखें जो डॉक्टर साहब ने बताई कि गर्मी के समय में तेज गर्मी पड़ रही है, पानी बार बार अपन भी देख रहे हैं कि गर्म हो रहा है, तो टाइम टाइम पे भी इनको पानी बदलत रहें और पिवात रहें। जैके सिंह छाया ऊपर छायादार व्यवस्था हो, जाके नाने बिन ने बता दे कि भैया टहनी डाल दो, ये जहाँ पोल्ट्री फॉर्म आप खोल रहे हैं वहाँ के आसपास छायादार बड़े बड़े पेड़ लगा दें जिससे ठंडी हवा चलेगी तो तापमान जो है सामान्य रहेगा। और जाके अलावा बिना हिंसक जानवरों से भी बचाना चाहिए कि वो जितने आप बिना पाल रहे हैं, जो आपने भी इनको घर बनाओ है, दड़वा बनाओ है, बिना कोई हिंसक जानवर जो है ना आए।
2: सही बात है।
3: और जई तरीके से बिना जिनने बताओ कि इसे दाने की व्यवस्था जो है वो आप अगर आपको ऐसा लगाता है तो आप रात में बिन के दाने की व्यवस्था कर सकते हैं कि रात को दाना चुगे हैं वो, और जो बुरादा बिन के लाने अपन ने बिछाओ है वो बिछावन भी एक इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गीलो नहीं हो जाए, बात को भी ध्यान रखें। और मुलक से ऐसी बातें जिनने बताई हैं जिनको अपन ध्यान रख रहे थे, तो निश्चित तौर पर अपने जो मुर्गी पालने वाले भैया हैं, मुर्गी पालक हैं, वो अपने जो देश से मुर्गी पालन कर रहे हैं वो उस देश में वो सफल होंगे। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बातचीत को लाभ हमारे किसान भैया जरूर लेंगे।
2: अब बहन अपन भैयान का जैसे कि अपन उन्हें उनके मनोरंजन के लाने एक ना एक लोग भी सुनवा।
3: हाँ।
2: तो जय क्रम में एक अपन बढ़िया सा उनके लाने एक लोग भी सुनवा रहे।
3: हाँ,
2: हैं।
3: सुनवा।
2: रहमन पानी राखिए और जहाँ गायक कलाकार हैं राम सिंह राय।
3: ठीक है भैया, सुनाते हैं अपन जो

0: रुपेश भैया, आपने बहुत ही अच्छो लोकगीत सुनवाओ है और जे लोकगीत को सुन के आनंद भी आ गयो और समझाइश भी मिल गई कि भैया समय रहत अगर अपन नहीं जेते तो आवे वालों कल अपैला ने बहुत ही बड़ी समस्या लेके आएगो। यानी ये धरती पे जल के बिना जीवन संभव नहीं है। आप और हम सभी जानते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। जल को कोनो विकल्प नहीं है कि अपन कितन और से खरीद लें या दूसरों बना लें। और जाके बाद भी अपन देख रहे हैं कि अपने मुल्क से ऐसे भैया बहने हैं जो उनके पास पानी आते हैं तो वो खूब पानी फैलाते हैं, मोटर गाड़ियाँ धोते हैं, खूब बिखराते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया कि जल है तो कल है। अपन देख रहे हैं कि जो अपने बड़े बुजुर्ग रहते, जमींदार रहते, बिन्ने अपने रुपये पैसन को कितने सदुपयोग करो तो है ना, जगह जगह बाबड़ी बनवाई, तालाब बनाए, कुएं बनवाए, पोखरे बनवाई। बिनको उद्देश्य यही है तो कि बरसात को जब पानी आए तो वो वहाँ में समाहित हो जाए, जो इस बह के जो है बर्बाद नहीं हो। और जब फोनों को जरूरत पड़े अपनी खेती बाड़ी के लाने, पीवी के लाने, पशु के लाने, तो हम इनको उपयोग कर सकें।
1: सही बात करें बहन, और जो उनके पानी नहीं मिल रहा है, पानी की एक बूंद के लाने
0: दिन से पूछो कि पानी को कम हो रहा है। बिल्कुल, अपने घर एक दिन आप पानी नहीं आए तो हाहाकार मच जाते कि भैया आज नल नहीं आए, कम नल आएंगे, कितने से पानी लाएंगे। तो पानी के मूल को पहचानना चाहिए। देखो कितने पहले ही अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, अपने जो ये सब थे, बिन्ने जो पहले ही समझाइश दी थी कि ऐसो भी समय आएगो जब पानी जो है मोल बिकेगो। जहाँ अपन पानी को दान करत रहे, आज पानी अपन मोल खरीद रहे। और अब भी अगर अपन नहीं चाहते जे बात से कि अपन को जल को संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, तो आगे आगे जो स्थिति का बनेगी, बाकी अपन कल्पना करने से ही डर जाते हैं। तो अपन और उनको चाहिए कि पानी की एक एक बूंद को अपन सहेज के रखें। अपने किसान भैया खेती बाड़ी में अपने आधुनिक सिंचाई की विधियों को इस्तेमाल करें जिसे

0: साफ कर सकते हैं। तो और बच्चे छोटे छोटे मोड़ा मोड़ी इनको गर्मी में पानी बहुत अच्छा लगता है, तो कहा है कि वो पानी खोल के बैठ जाते हैं नल, तो वह पानी बखराते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर किसान भैया जो है, एक-एक बंदे को नहाने नहान होता है तो मोटर चला देते हैं ना, पानी वहाँ से मुलक बर्बाद हो जाते हैं। तो बरसात के पानी को भी सहेजने के लिए अपने छत पे सारे पानी को इकट्ठा एक पाइप के जरिए उतार के आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को उपयोग में लेना चाहिए।
1: सही
0: और
1: बात है।
0: अपन देख रहे हैं हजारों गैलन पानी जो है बरसात को ऐसे ही बह के बर्बाद हो जाता है, कहा ऐसे कि अब कच्ची सड़कें नहीं हैं, अब पक्की सड़कें हैं, तो जमीन में पानी सूख नहीं पाता, जैसे भूमि का जल स्तर जो है कम हो जा रहा है। तो अपन सभी का जो दायित्व बना है कि अपन जो है पानी को संजो के रखें, पानी की महत्ता को समझें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाएं और इन्हें जीवित भी रखें ताकि वन हरे भरे हों, पर्यावरण स्वच्छ हो और समय पे बरसात हो।
1: सही बात करी बहन आप। और जल संरक्षण को तो पानी को तो अपन जितने उपयोग समझ के करेंगे निश्चित रूप से, कहा है कि जैसे पानी उपयोग अपने ऐसे करें जैसे डीजल पेट्रोल होता है अपन बाकी कीमत
0: बिल्कुल
1: समझ लेते
0: बिल्कुल
1: हैं, वैसे
0: सही
1: ही अपने पानी
0: भैया,
1: की भी
0: बिल्कुल
1: कीमत
0: सही कह
1: समझनी
0: रहे हैं,
1: चाहिए।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बचत तो बचत बहुत होती है जीवन में। अपन देखो, अब अपन बात कर रहे हैं पानी की बचत का, अपन ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल गैस सभी की अपन को बचत करना चाहिए, आड़े भगत में ये बचत है ये अपने काम आते हैं। तो भैया देखो, जय के सिंह बीरा हो चलिए कि अपन किसान वाणी कार्यक्रम से आज्ञा ले लें। सो आज
1: रुपेश
0: के किसान वाणी कार्यक्रम से चलवे की अपनी गीता बहन और
1: भैया क्यों आप
0: आगे
1: कहते
0: दो, राम राम, जय
1: जय
0: जवान,
1: जवान
0: जय
1: जय किसान।
0: किसान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
3: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज हम चर्चा करेंगे नई दिल्ली में ब्रिक्स में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बहुपक्षीय सहयोग का मजबूतीकरण विषय पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ गुलशन सचदेवा। गुलशन जी, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी शुक्रिया बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच।
3: गुलशन जी, जैसा हम जानते हैं ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। भारत में अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है

0: लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण, यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। मूल रूप से यह ब्रिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन का एक समूह था, जिसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इस समूह की पहली अनौपचारिक बैठक 2006 में हुई थी, जबकि पहला आधिकारिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में आयोजित किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया, जिसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में ब्रिक्स का और विस्तार हुआ है। आज ब्रिक्स एक व्यापक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा और वैश्विक जीडीपी तथा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी समाचार।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम एक अंश सुनते हैं, उनके जो वेलकम एड्रेस था, जो आज सुबह उन्होंने जब ये बैठक शुरू हुई तब उन्होंने क्या कहा।
2: एक्सलेंसीज, डेलीगेट्स, कलीग्स, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वार्म वेलकम टू इंडिया फॉर दिस मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज चेयर आई थैंक ईच डेलीगेशन फॉर देयर प्रेजेंस एंड फॉर देयर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन cooperation within the BRICS framework. Excellencies, India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. These engagements have strengthened cooperation and advanced dialogue across sectors. We look forward to building on this momentum.
1: गुलशन जी, हमने अभी सुना कि डॉक्टर जयशंकर ने सारे जो मेंबर देश हैं ब्रिक्स के, उनके विदेश मंत्रियों का स्वागत किया, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, सितंबर में मेन ब्रिक्स समिट होना है हेड्स ऑफ स्टेट का, उससे चार महीने पहले जो ये विदेश मंत्रियों की बैठक है, इसका आप महत्व कैसे आंकते हैं, खासकर जो अभी विश्व में उथल पुथल चल रही है भू राजनीतिक स्तर पर।
3: जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सबसे बड़ी मीटिंग जो सितंबर में समिट मीटिंग होगी, उसकी जो मेन तैयारी है वो जो विदेश मंत्री है सब देशों के मिलके, उसके लिए बहुत ही, मुझे लगता है, ये महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, क्योंकि इस मीटिंग के अंदर ही एक मुख्य रूप से जो पूरा मसौदा तैयार होगा जो समिट मीटिंग के अंदर तक जाएगा। अभी उसमें थोड़ा वक्त है, लेकिन पूरी जो भू राजनीति है दुनिया की वो पूरे तरीके से प्रभावित है। पहले वो यूक्रेन युद्ध से थी 4 साल से, अभी वो भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाल में जो पिछले 2-3 महीनों में जो पूरा जो पश्चिम एशिया के अंदर, जो ईरान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, तो उसके कारण जो पूरी दुनिया को और खास तौर से ब्रिक्स के मेंबर हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उसके अंदर जो एक तो एनर्जी की जो सारी मार्केट्स हैं उसमें काफी मतलब बदलाव आ रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक तरीके से बंद है, तो उससे भी बहुत दिक्कतें आ रही है, जो आवागमन हो रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ब्रिक्स का एक मेंबर देश है, तो उस मेंबर देश के ऊपर अटैक हुआ है, और उसके बाद जो ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो ईरान ने खाड़ी के दूसरे देशों में, उसने उसका जवाब में, क्योंकि वहां अमेरिका के बेसिस थे, तो वहां पे उसने सऊदी अरेबिया में, यूएई में, बहरीन में और कतार में जो किए थे हमले उसके जवाब में, तो उसमें यह भी दिक्कत है ब्रिक्स के देशों के लिए, क्योंकि यूएई भी एक ब्रिक्स का मेंबर है और सऊदी अरेबिया भी मेंबर एक तरीके से है, क्योंकि वो टेक्निकली मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी मेंबर के लिए उसको भी 24 में इनवाइट किया गया था। तो काफी जो ब्रिक्स के देश हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए एक काफी गंभीर मुद्दा है ये जो पश्चिम एशिया के अंदर जो सारी उथल पुथल चल रही है। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो पूरी दुनिया इस समय जो जूझ रही है वो है ऊर्जा के संकट से, और उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर 10-11 देश जो अभी जो ब्रिक्स के हैं खासतौर से, चाहे उसमें रूस है, सऊदी अरेबिया है, या यूएई है, या जो और देश हैं, वो लगभग मुझे लगता है कि 30% से ज्यादा जो है वो ऊर्जा का वहां से उत्पादन होता है और वहां से निर्यात होता है।
1: जी,
3: और उसी तरीके से ब्रिक्स के अंदर ही ऐसे देश हैं जैसे भारत है, चीन है, ब्राजील वगैरह दूसरे देश हैं जहां पे काफी इसकी खपत भी है ऊर्जा की, और रूस और सऊदी अरेबिया में भी होती है, दूसरे देशों में भी होती है। तो लगभग 30% से ज्यादा वहां पे ऊर्जा की खपत भी इन्हीं देशों के अंदर होती है। तो एक बड़ा जो ऊर्जा का संकट दुनिया का है उसके अंदर मुझे लगता है कि

0: देश जो हैं उसके अंदर कोई एक अच्छी कोई समझ बनती है तो उसके बारे में काफी जो है वो कोई पहल ले सकते हैं और उसका कोई हल निकालने की कोशिश में काफी योगदान इन देशों का हो सकता है। हमारे विदेश मंत्री ने भी यही बात कही है कि जिस तरीके की जैसे हम पहले काफी सालों से ये बात कर रहे थे मल्टीपोलैरिटी की कि जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो बनता जा रहा है, लेकिन अभी जिस तरीके की परिस्थितियां मुझे लगता है बनी है उसमें एक तरीके का मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है वो ऑलरेडी आ गया है। उसमें आज जैसे हम देखते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ ब्रिक्स की उसी टाइम जो है अमेरिका के राष्ट्रपति वो चीन में वहां पे उनका दौरा चल रहा है, उसके ऊपर भी दुनिया की निगाहें लगी हुई है कि वहां से क्या, तो वो भी चीन भी एक ब्रिक्स का देश है उसी कारण उनके विदेश मंत्री यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ के एम्बेसडर कर रहे हैं। क्योंकि ब्रिक्स के देश जब ये एक तरीके का जो मल्टीपोलर वर्ल्ड जो पूरा बन गया है
1: जी
0: और ये जो नॉन वेस्टर्न सारे कंट्रीज जो हैं ब्रिक्स के अंदर उनका जो रोल है पूरी दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि तीसरी दुनिया के देश जो हैं और खासतौर से जो ग्लोबल साउथ हम जिसको बोलते हैं उनके जो सारे देश हैं, पश्चिम के देशों ने जैसे वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस का, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड का जिस तरीके से किया है उससे काफी जो है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनको चैलेंज लगता है, काफी घबराए हैं। बहुत से देश और हैं जो अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो ग्रुप है उसकी महत्ता पहले से बढ़ती जा रही है और लोगों को लगता है कि एक ऐसा कोई अल्टरनेटिव जो ग्लोबल गवर्नेंस का ब्रिक्स के देश या ब्रिक्स के देश ऐसे सारे देश जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज मिलके वो कोई दे सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे लगता है ये जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग हो रही है और कल भी इसके बारे में जो है BRICS20 के बारे में एक सम्मेलन होगा
1: जी
0: उसमें 20 साल में क्या ब्रिक्स ने वहां पे मतलब अभी तक जो है हासिल किया है और कैसे उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और कर सकते हैं, इसका संस्थागत ढांचा और मजबूत कर सकते हैं क्योंकि अब मेंबर बढ़ रहे हैं और मेंबर भी इसके अंदर आना चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी बड़ी बात जो है ब्रिक्स के देश वो भी कल जिसके बारे में काफी खुलासे में बात होगी वो ये है कि पूरा जो ग्लोबल गवर्नेंस है जो पूरी दुनिया का जो सारा गवर्नेंस है और पूरा जो मल्टीलेटरल सिस्टम है जो अभी क्योंकि जो संस्थाएं बनी हुई हैं ग्लोबल ऑर्डर को चलाने के लिए चाहे वो यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है और बहुत सी संस्थाएं हैं, WTO है, WHO है, तो
1: जी
0: उनसे जो उम्मीद देशों को है वो उम्मीद शायद वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके अंदर किस तरीके से सुधार किए जाने चाहिए उसके बारे में भी कल एक लंबी बातचीत सारे विदेश मंत्रियों के अंदर होगी और उससे जो मसौदा निकलेगा फिर वो आगे समिट मीटिंग तक जाएगा।
1: गुलशन जी, जैसा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जो बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें हमारा जो सहयोग है, देशों के बीच में सहयोग है, उसको और मजबूत करने के जो प्रैक्टिकल तरीके हैं उन पर गौर किया जाएगा और जो भी ग्लोबल और रीजनल डेवलपमेंट्स हैं उन पर रिफ्लेक्ट किया जाएगा, तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि इससे बहुत पॉजिटिव नतीजे निकल सकते हैं?
0: जी, भारत ने तो पहले से कहा है और इसके अंदर भी विदेश मंत्री जी ने ये बात बिल्कुल उसके ऊपर दोबारा से उन्होंने जोर दिया है कि जो भी मुद्दे हैं उनका डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा ही उसका कोई हल निकालना चाहिए।
1: जी
0: और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो ग्लोबल साउथ के देश हैं और ब्रिक्स उसके अंदर ग्लोबल साउथ की एक अच्छी बहुत बड़ा मजबूत एक संस्था है,
1: जी
0: वो ग्लोबल साउथ के देश है वो पहले जैसे कुछ गरीब विकासशील देश नहीं है, ये बड़े बड़े देश हैं जो आर्थिक तौर से भी, राजनैतिक तौर से भी, तकनीकी के तौर से भी और जनसंख्या के आधार से भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो एक तो ये है कि जो पूरी दुनिया की जो पूरी बदलती हुई व्यवस्था है उसके अंदर ब्रिक्स एक बहुत अच्छा योगदान दे सकता है। जितने भी संकट हैं अभी दुनिया के अंदर उनके अंदर भी समाधान करने के लिए ब्रिक्स के देश अगर एक अच्छी एकजुट होकर एक मत होकर कुछ बात करते हैं तो उसका एक हल निकलने की तरफ एक अच्छा कदम चल सकता है। उसी तरीके से क्योंकि क्योंकि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत की बात कर लीजिए, चीन की बात कर लीजिए, ब्राजील की बात कर लीजिए और बाकी जो देश हैं इजिप्ट, रशिया वगैरह, तो इन सबको अगर हम मिला के देखते हैं तो काफी बड़ा दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा, काफी बड़ा व्यापार का हिस्सा और उसके अलावा इनफैक्ट जो काफी बड़ा निवेश जो एक दूसरे देशों से दूसरे देशों में जाता है
1: जी
0: वो भी ब्रिक्स के देशों के अंदर ही आपस में और पूरे ग्लोबल साउथ के अंदर वो हो रहा है, तो उसके अंदर एक अच्छी भूमिका ब्रिक्स निभा सकता है। और खासतौर से क्योंकि अभी पूरी दुनिया अभी जूझ रही है जो पूरे संकट के, जो भू राजनीति का आपने कहा, जो पश्चिम एशिया वाला जो मामला है, इनफैक्ट जितने भी देश हैं ब्रिक्स के अंदर उनके साथ बायलैटरल रिलेशन हमारे बहुत ही सबके साथ अच्छे हैं। तो उन जो अच्छे हमारे रिश्ते हैं उनका मुझे लगता है एक फायदा

0: फायदा एक ब्रिक्स को भी हो सकता है, क्योंकि उसमें यह है कि आप एक अच्छा कंसेंसस बनवा सकते हैं देशों के अंदर, जैसा
1: जी
0: हमने G20 की प्रेसिडेंसी में भी देखा था। और जो पूरी, एक तो यह है कि ब्रिक्स को और मजबूत कैसे किया जाए, दूसरी बात यह है कि जो पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, वो सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनकी मंशा के मुताबिक वहां पे सुधार हो।
1: जी
0: ऐसा ना हो कि पूरी जो मनमानी है पश्चिम के देशों की है अभी तक जैसे चलती रही है, और उसी के चलते हमने देखा बहुत से संकट इस पूरी दुनिया में, खासतौर से आर्थिक संकट अगर हम देखते हैं पिछले 10-20 साल में, तो चाहे वो 2008 का क्राइसिस था, चाहे वो यूरो क्राइसिस था, वो पश्चिम के देशों की तरफ से शुरू हुए थे, लेकिन उसका जो खामियाजा था भुगतना पड़ा था जो ग्लोबल साउथ के देशों को। तो
1: जी
0: इसलिए जो ग्लोबल साउथ चाहता है कि वो उन दिक्कतों जो उधर से हो रही हैं उनसे बचे, चाहे वो अब ऊर्जा का मामला है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जैसे पूरे इंटरनेशनल जो सारे जो यातायात के जितने जो भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, वो पूरे एक तरीके से खुले रहे जैसे खुले पहले रहते थे। और क्योंकि उसके चलते ये भी हुआ है कि अब ऊर्जा के दाम भी पहले से बहुत बढ़ गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ है कि सबसे बड़ा जो उसका नुकसान हो रहा है वो एशिया के देशों को हो रहा है और जो तीसरी दुनिया के देशों को हो रहा है। और उससे ये है कि उनसे, क्योंकि तेल के दाम अगर बढ़ते हैं तो उससे महंगाई भी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसके बाद जो पूरे जो ग्रोथ है, जैसे अभी IMF के अभी जो नए नंबर्स आए हैं उनमें ने कहा है कि जो ग्लोबल ग्रोथ जितनी पहले होने वाली थी उतनी शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो अगर उतनी ग्लोबल ग्रोथ नहीं होगी तो उसका नतीजा ये भी है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उससे जो है एक तरीके से एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका सारा जो परिणाम है उसका, वो काफी देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स के जो अपने देश हैं ये काफी मजबूत हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हैं, अगर ये आपस में मिलके भी कुछ एक पहल करते हैं तो उसका भी शायद एक अच्छा नतीजा निकलेगा कि उसका, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर हो, चाहे वो G20 के अंदर हो, क्योंकि काफी देश जो ब्रिक्स वाले हैं वो G20 के अंदर भी उसकी बराबर के वो भी हिस्सेदार है वहां पे, तो बाकी सारी जो और संस्थाएं भी हैं, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे WTO वगैरह हो, तो
1: जी
0: सब जगह पे ब्रिक्स के देश, क्योंकि अब बड़े अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं, तो इनका रोल वहां पे भी है। तो ब्रिक्स के अंदर विदेश मंत्रियों की अभी जो यहाँ पे, अगर इन सब बातों के बारे में, खासतौर से जो इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस के सुधार के बारे में, कोई अगर इनके बारे में अच्छा मत बनता है तो आगे फिर वो समिट में उसके अंदर वो जाएगा, और उस समिट में होने के बाद फिर जो बाकी दूसरी संस्थाएं हैं वहां पे जाके भी, और हो सकता है उसके बारे में कोई एक ग्लोबल जो है एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए, और कोशिश ये देश करेंगे कि सुधार ऐसे हो जिसका फायदा जो है वो ग्लोबल साउथ के देशों को हो, ना कि जो पश्चिम के देश हैं जो पहले से ही बहुत डोमिनेट इन इंस्टीट्यूशंस को करते रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी।
1: गुलशन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया कि कितना अहम है जो ये बैठक हो रही है विदेश मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के, और बहुपक्षीय सहयोग यानी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन के मजबूतीकरण के लिए भी इसका कितना अधिक महत्व है।
0: जी, शुक्रिया।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आइए सबसे पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से। कमाल खान की आवाज, समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे बोल, उत्तम सिंह का संगीत और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण की आवाज़ में, आनंद बख्शी की शब्द रचना और जतिन ललित का संगीत। श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म सत्या से, आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाज़ें हैं, गुलजार के लिखे बोल और विशाल का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आनंद ले रहे हैं आप कार्यक्रम फिल्म संगीत का। इसी कड़ी का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म सिर्फ तुमसे। अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें हैं, नदीम श्रवण का संगीत और समीर के लिखे बोल।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
6: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
7: वरिष्ठ कवि और संस्कृति कर्मी श्री प्रेम शंकर शुक्ल,
8: 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष में मैं आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आकाशवाणी दरअसल भारत की आवाज़ है, भारत की धड़कनों को हम सब के बीच आकाशवाणी ने दूर दुनिया तक पहुंचाया है। मैं बहुत मंगल कामनाएं देता हूं, आगे की यात्रा उसकी बहुत सुखद सुमंगलकारी और उसी तरह से भारत भावना से ओतप्रोत रहे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
4: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमड़ी के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: एन इंडियन डो
6: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
5: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
7: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
8: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
7: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए क्षित कुमार वैद्यान।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती हो।

0: व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको ये गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म तीसरी कसम से। आशा भोसले की आवाज़, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म गाइड से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, एसडी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र की शब्द रचना।

शकील बदायूनी का लिखा गीत अभी आपने सुना साहेब बीबी और गुलाम फिल्म से, आशा भोसले के स्वर और हेमंत कुमार का संगीत। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सीआईडी से। शमशाद बेगम की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर का संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। फिल्म नीलकमल का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी के बोल और रवि का संगीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम का सबसे पहला जो खत है वो हमें मिला है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमेरखंड महाराष्ट्र से। खत भेजने वाले हैं अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश गवहाणकर। साथ ही हमें खत मिला है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, शैलेश गवहाणकर, वैशाली गवहाणकर, श्वेता, सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परीका। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गीत जो हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। किशोर कुमार और मुकेश की आवाज़ें हैं, साथ ही इसमें आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत जो हम लेने जा रहे हैं उसके लिए हमें खत प्राप्त हुआ है उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा और शिवम वर्मा का, राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी और सनी जसवानी का, साथ ही कन्हैयालाल प्रजापति जी। और इस गीत के लिए हमें खत भेजा है जेएल रोड देवास से नवीन वर्मा और बबलू वर्मा ने, साथ ही इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है भोपाल से तुषार तिमिलसेना ने और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। तो आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गीत फिल्म धर्मात्मा से। मुकेश और कंचन की आवाज़ें हैं, इंदिवर की शब्द रचना और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, कमर जलालाबादी के बोल और ओपी नैयर का संगीत। इस गीत के लिए हमें खत लिख भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, पोतुम राजतोबा खान, राउफ भाई और शाहिद भाई ने। साथ ही एक इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद आप ले रहे हैं। आपकी फरमाइश में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमें पसंद लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने। साथ ही हमें खत मिला है एचल करंजी महाराष्ट्र से हरीश थानवी, ज्योति थानवी और सौंदर्य थानवी का। अगला खत हमें इसी गीत के लिए प्राप्त हुआ है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट का। आइए गीत हम सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म हमराज से। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना और रवि का संगीत, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। इसी कड़ी में आइए अगला गीत हम सुनते हैं, जिसके लिए हमें खत भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। साथ ही अगला गीत हम आपको जो सुनवा रहे हैं उसके लिए खत हमें भेजा है महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया और केशव पटेल ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंत और सन्मति पंचोलिया ने। तो ये गीत सुनते हैं आशा भोसले और शमशार बेगम की आवाज़ों में, SH बिहारी के बोल और OP नैयर का संगीत। फिल्म का नाम है किस्मत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसमें आज सुनिए केदार राग पर पंडित विदुर मलिक का ध्रुपद गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी का प्रसारण अभी किया जा रहा था। इसमें आपने सुना केदार राग पर पंडित विदुर मलिक का ध्रुपद गायन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच

0: के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by

मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।